0: आरोप लगाया कि ये कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को कम वेतन पर नियुक्त कर अमरीकी कर्मचारियों की जगह लेने के लिए इस व्यवस्था का इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि अमरीकी प्रशासन ने अब तक कंपनियों के खिलाफ जांच के निष्कर्ष या कथित उल्लंघनों का विस्तृत ब्यौरा जारी नहीं किया है। ये रोक PIRM आवेदनों पर लागू होगी। इससे मौजूदा H1B वीजा या ग्रीन कार्ड अपने आप रद्द नहीं होंगे। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट ने इन आरोपों को खारिज किया है। कंपनी ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में उसके द्वारा दाखिल लगभग 6,000 H1B आवेदनों में से 80% मौजूदा कर्मचारियों के वीजा की अवधि बढ़ाने या उनकी स्थिति में बदलाव से संबंधित थे। इनमें नए कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित मामले शामिल नहीं थे। कंपनी ने बताया कि शेष आवेदन ऐसे लोगों के लिए थे जो पहले से ही अमरीका में कानूनी रूप से रह रहे थे। इन आवेदनों के जरिए की गई नई नियुक्तियां अमरीका में कंपनी के कुल कर्मचारियों का लगभग 1% थी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं यशस्वी किरियाल।
1: इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होना चाहिए। श्री वेंस ने कहा कि अमेरिका असाधारण कौशल और क्षमता वाले विदेशी नागरिकों का स्वागत करता है, लेकिन H1B वीजा कार्यक्रम अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को दो कसौटियों पर ध्यान देना चाहिए। पहली, क्या संबंधित पद पर कोई ऐसा काम है जिसे अमरीकी कर्मचारी नहीं कर सकते, और क्या आवेदक में असाधारण क्षमताएं हैं। श्री वेंस ने कहा कि अमरीकी प्रशासन नवाचार और आर्थिक विकास में योगदान देने वाले विदेशी पेशेवरों के खिलाफ नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला सहित 6 प्रमुख प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को वैज्ञानिक उपलब्धियों और तकनीकी नवाचार के लिए सर्वोच्च अमरीकी पुरस्कारों से सम्मानित किया है। श्री ट्रंप ने उनके योगदान को विश्व स्तर पर अमरीका के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री ट्रंप ने न्यू गोल्डन एज समिट में सत्य नडेला और डेल टेक्नोलॉजीज के संस्थापक माइकल डेल को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक प्रदान किया। इटली की संसद ने देश की चुनावी प्रक्रिया में व्यापक बदलाव को मंजूरी दी है। इससे प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत मिली है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: इस प्रस्ताव को व्यापक रूप से इटली की राजनीतिक प्रणाली को मजबूत करने और प्रधानमंत्री मेलोनी के नेतृत्व वाले मध्य दक्षिण पंथी गठबंधन की चुनावी संभावनाओं को बेहतर बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पिछले महीने इस गठबंधन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली की सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार होने का रिकॉर्ड बनाया था। सदन ने गुप्त मतदान में 227 वोटों के मुकाबले 164 वोटों से इस विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे महीनों की गर्मागर्म बहस के बाद इस कानून को अंतिम संसदीय मंजूरी मिल गई। इस उधार में एक बड़ा बहुमत पुरस्कार शामिल है। इसके अंतर्गत चुनाव पूर्व विजयी गठबंधन को संसद के दोनों सदनों में अतिरिक्त संसदीय सीटें दी जाएंगी, बशर्ते उसे कम से कम 42% राष्ट्रीय वोट प्राप्त हों। नए कानून के अंतर्गत इटली की मौजूदा मिश्रित चुनावी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रच्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रिको गुंजी को हराया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में हवाई अड्डों पर हमले किए। भारत ने हमलों की निंदा की, कहा नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाना अनुचित। भारत ने अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह किया। अमेरिका ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया रोकी। इसका उद्देश्य केवल असाधारण विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करना है। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। और आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रच्चानोक इंतानोन से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आ गई जी, आ गई, बिल्कुल आ गई। मुझे पता है कि आप इंतजार कर रहे थे ना दिल का मेल बॉक्स कब शुरू और कब हम बारिश कर दें बस मैसेजेस की, और आपकी बरसात जो है वो शुरू हो चुकी है। मेरे पास आपके लगातार मैसेजेस पहुंच रहे हैं, दिल का मेल बॉक्स सुन रहे हैं आप, और कहां पर आपको मैसेजेस भेजने हैं जल्दी से बता दूं, 9868886853 पर, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं fmgoldaiardelhi@gmail.com पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस, और ये है दिल का मेल बॉक्स। 10:31:35 हो चुके हैं और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच रहे हैं। नंबर फिर से बता दूं, 9868886853। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, लेकिन एक मैसेज एक ही बार करिए काफी है। बार बार बार बार एक ही मैसेज मैं देखती जा रही हूं स्क्रीन पर, ये अच्छा नहीं लगता है क्योंकि फिर ढूंढना पड़ता है मुझे कोई नया मैसेज, और दो बार तो मैं नाम किसी सूरत में नहीं लूंगी, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है बार बार मैसेज करने का, सिर्फ एक बार करिए काफी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, और किस किस ने हमें मैसेजेस भेजे हैं जरा पढ़ लें। महाराष्ट्र पुणे से सुनील, सुषमा, अनन्या, राजवीर गायकवाड़ का हमें मैसेज पहुंचा है, और हमें लिखा है मुंबई से अनु बरजात्या, शमसुल खान, अनुराज बेनारा ने, अनिल जैन, जैन साहब, संयम, मुस्कान, मास्टर जीव्यम, माल्यान सरधना मेरठ से हमें लिख रहे हैं, और धर्मेंद्र शेपा, कपिल, ईशान, पूजा, भोपालगढ़ राजस्थान से, जिला खरगोन, सनावत मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और पूरे परिवार ने हमें लिखा है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी ने हमें शांतिनगर सोनीपत से लिखा, और ये मैसेज हमें मिला है अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, उत्तम नगर दिल्ली से जयराम और सचिन खोरवाल के साथ, और सौराष्ट्र राजकोट से हमें जूली, जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण कुछ पुजारी का मैसेज, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना गुरुवंश सिंह जौड़ा का मैसेज, और हमें अफरोज शेख पता नहीं मुआ सुपोल बिहार से मैसेज भेज रहे हैं, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, कितिका खोरवाल का मैसेज, मोहम्मद दबासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन और पूरे परिवार का, ऊपरकोट मोहल्ला चुकुंडी बुलंदशहर से, गांव शोभापुर मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, और हमें लिखा है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, बेबी आराध्या साहू का मैसेज, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू राजपाल, काजल मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से हमें लिख रहे हैं, और हमें लिखा है बड़ा बम चौक खंडवा एमपी से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे बेबी किट्टू का मैसेज पहुंचा है, और हमें लिखा है ओम प्रकाश तेगचंदानी ने ग्रेटर कैलाश से नई दिल्ली से, और प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन का हमें मैसेज मिला है ग्राम बाघा मुड़ा कोमा खान से प्रकाश देवांगन के साथ, और हमें लिखा है गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी ने भी, और इसके साथ साथ प्रदीप सलूजा का हमें मैसेज मिला है संगीता सलूजा और प्रथम सलूजा के साथ जनकपुरी से, बबलेश पवार गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से लिख रहे हैं, और डेनी पवार, मनीष पवार, खलीफों की बावड़ी, ये सब है इनके साथ, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान ने हमें मैसेज पहुंचाया है, गुरमीत सिंह मीता ने साउथ एक्सटेंशन से, सुरेंद्र सिंह रावत और पूरा परिवार हमें लिख रहा है मेन सागरपुर नई दिल्ली से, और ये मैसेज हमें दुर्गेश गुप्त राज का भोपाल मध्य प्रदेश से पहुंचा है, आपकी बात हम तक पहुंच गई है और जरूर ये अधिकारियों तक भी हम पहुंचा देंगे, और इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है कहां से, महेश अग्रवाल ने हमें लिखा है बहादुरगढ़ से, और आपकी फरमाइश तो आज मेरे पास नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, किसी और फरमाइश को किसी और दिन जरूर पूरा करेंगे। इसके अलावा हमारे पास

क्रिकेट भिवानी से कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण कपिल कुणाल का मैसेज हमें पहुंचा और हमें लिखा है गंज डुंडवाला से, ये तो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा अतर सिंह करदम का मैसेज हमें कहां से मिला है, नाम नहीं लिखा आपने जगह का। ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम सुंदरम और कमलापुरी वैश्य परिवार का मैसेज हमें मिला है। और कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली का हमें मैसेज मिला है पूरे परिवार के साथ। महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रगेश, प्रीतेश संघई का परभणी से मैसेज। और हमारे पास ये आसाम से हितेंद्र दास का मैसेज पहुंचा है और हमें किसने लिखा है भाई, बहुत सारे मैसेजेस हैं। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक का। और इसके अलावा संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे का नांदेड़ महाराष्ट्र से मैसेज है। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, पद्मा टॉकीज नेपानगर से हमें लिख रहे हैं। साथ ही हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है, अब देखिए रिपीट मैसेजेस होते हैं तो ढूंढती रह जाती हूँ ना। वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान का मैसेज पहुंचा और साथ ही ये हमें लिखा है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन माहिराने, जसपुर उत्तराखंड से। और ये मैसेज किसका है, ये तो हमने ले लिया। और ये है अतर सिंह, राजकुमारी, अनुज, अंजलि, डॉक्टर पारुला द्विक समयपुर दिल्ली से हमें लिख रहे हैं। और मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद रसा अंसारी, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद जुबैर, तनवीर आलम का हमें असालतपुरा मुरादाबाद से मैसेज पहुंचा है। और बहुत सारे मैसेजेस हैं, कोशिश करूंगी शामिल करती चलूंगी सबको, लेकिन फिलहाल तो गीत की बारी है। तो भाई ये गीत की फरमाइश हमें भेजी है बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार ने, गांधी चौक बाड़मेर से, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा ने और रामदेवरा से दिनेश चौहान ने। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत।

0: आंवला विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का पावर हाउस है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा व बालों को स्वस्थ रखता है। प्रतिदिन आंवले का सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जिंदगी के सपने तभी सच होते हैं जब आप करते हैं स्मार्ट प्लानिंग।
2: LIC लाया है एक नया प्लान, नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान, एक ऐसा प्लान जो दे आपको डुअल बेनिफिट, इंश्योरेंस भी, सेविंग्स भी। इसमें आपको मिलता है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शंस के साथ अट्रैक्टिव गारंटेड एडिशंस एंड एनहांस्ड गारंटेड एडिशंस टू एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स।
1: अपने गोल्स के लिए चुनिए एक प्लान जो हो सिंपल, सिक्योर और स्मार्ट, LIC नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान के साथ। अधिक जानकारी के लिए अपने LIC एजेंट से संपर्क करें या www.licindia.in पर विजिट करें। LIC हर पल आपके साथ।
3: मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के तहत कानूनी तौर पर मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपने उपचार और अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित फैसले स्वयं ले सकता है, साथ ही सुसाइडल अटेम्प्ट के खिलाफ सजा भी नहीं होगी। ये हम सबका दायित्व है कि मानसिक बीमारियों का इलाज कानूनी और नैतिक दायरे में रहकर हो।
4: इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज और स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
6: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
5: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
6: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
5: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
6: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
7: मिलेट्स प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं जो कि गेहूं का एक उत्तम पौष्टिक एवं फाइबर युक्त विकल्प है। मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि ग्लूटेन फ्री अनाज है जिनका उपयोग रोटी, दलिया और खिचड़ी आदि बनाने में किया जा सकता है।
8: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस और ये है दिल का मेल बॉक्स। आपके मेल्स और मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं तो जल्दी से कुछ और नामों को शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद का हमें भोजपुर तगा सहारनपुर से मैसेज पहुंचा है। डॉक्टर पारुल सिंह, डॉक्टर विवेक वर्धन का मेरठ से और हमें लिखा है पंकज मोहड़ ने अमरावती महाराष्ट्र से। सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सादीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम का सहारनपुर से मैसेज मिला है और हमें लिखा है हरेंद्र सिंह खाती, राजेंद्र सिंह जाट, मनबीर सिंह जाट, ने गांव भड़कपुर, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश से। और ये मैसेज संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, भारत मक्कड़ का हमें मन्नत मक्कड़ के साथ पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से मिला है। हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा का ततरेंगी भाटापाड़ा से। और श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख और जगुताई राजे जाधव और पूरे परिवार ने हमें लिखा है मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का मैसेज और हमें स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर गुरलाल, अविराज शुभदीप का मैसेज मिला है फिरोजपुर पंजाब से। हमें ये मैसेज भेजा है दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हिमलता और सीआर कुलकर्णी ने। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम और पूरे परिवार ने ओखला संगम विहार से। शायद मैं ये पढ़ चुकी हूं ना कोई बात नहीं, गलती से हो जाता है, दोबारा दोबारा मत भेजा कीजिए दोस्त। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हिमलता, डिंपल देवांगन का मैसेज। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेराज जहां का हमें आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से मैसेज पहुंचा है। और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं लगातार, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का मैसेज और हमें कैलाश, दिनेश, रुक्मणी, गोराज, महिंद्र पार्क दिल्ली से लिख रहे हैं। साथ ही गिरधारी लाल अग्रवाल का धन्यवाद, झारखंड से हमें मैसेज मिला है। रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान का हमें हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से मैसेज पहुंचा है। और हमें लिखा है ये किसने भाई, ऋतु बत्रा, जुगल बत्रा, हर्षिता बत्रा और कृष्णा बत्रा ने दिल्ली से। थोड़ा सा अगर नामों को बोल्ड और क्लियर लिखेंगे तो मुझे पढ़ने में आसानी होगी। और ये मैसेज सतीश अनेजा, बिमला अनेजा का चंडीगढ़ से पहुंचा है। साथ ही हमें लिखा है मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेख शागिर, शेख वजीर, सोहिल शेख और पूरे परिवार ने। और इसके अलावा उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव, गरिमा का नई दिल्ली से मैसेज और हमें लिखा है अमृत विहार बुराड़ी से ममता देव ने। साथ में मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ, तैमूर और कलीम ने हमें गंज टुंडवाड़ा नई बस्ती से मैसेज पहुंचाया है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह का, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बेटा बजाज का मैसेज और हमें लिखा है अल्पेश चिक, रचना, पूजा, ज्योति, संगम विहार, हनुमानगढ़ से रेखा चिक, करण चिक के साथ। और ये मैसेज हमें सोनू का जरीवाला से लिखा है, पुकार जरीवाला, राम पुकार जरीवाला का। और नाम थोड़े क्लियर नहीं है दोस्त, थोड़ा सा क्लियर लिखिए ताकि मैं पढ़ पाऊँ। और इसके अलावा रेडियो मंसूरी रेडियो से हमें बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, साविस्ता मोहम्मद तसीब नसीब और पलक लुबना यश मंसूरी का मैसेज हमें पहुंचा है पूरे परिवार के साथ। और साथ ही ये मैसेज शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल, योगेश, दीपक कुमारी, पूजा का हमें राजस्थान से मिला है। और हमें लिखा है बबलू कश्यप, जॉनी कश्यप, विपिन कश्यप और पिंटू दीवाना ने नई दिल्ली से नवाब भारती के साथ। और भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति पौरुष का व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से मैसेज पहुंचा है। झज्जर से हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया का मैसेज। और इसके अलावा हमारे पास संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया का बागपत यूपी से पहुंचा है। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक का पहाड़गंज, मुल्तानी ढांडा से। और ये मैसेज हमें मिला है रघुबीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो नायाब, एलिजा नायब और लड्डू का। बहुत सारे मैसेजेस हैं, जरूर कोशिश रहेगी औरों को भी शामिल करने की, लेकिन फिलहाल ये गीत आप तक पहुंचाती हूं। और इसके फरमाइश हमें लिखी है गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद ने। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत।

और अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है, जल्दी से कुछ नाम और शामिल कर लेती हूँ। नबी हसन अब्बासी, शाहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम, यशफ का मारहरा।

दरवाजा एटा से पूरे परिवार के साथ। जुबैर अली खान सबीहा का हमें किदवई नगर सिद्धपुरा से मिला है और इसके अलावा श्रोता नजफगढ़ जय विहार से हमें फारूक शाहरुख शबनम शाहनाज और चीकू का मैसेज और कमल भगत हमें लिख रहे हैं जालंधर से। लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज बेगम इमराना नाज राधा नामदेव का मैसेज हमें मिला है और शिवा गोप प्रेम गोप कपिल शिवांश संगीता लिपि दीपाली का हमें मैसेज पहुंचा है। चाईबासा झारखंड से एकता कॉलोनी रोहतक से हमें सीताराम कांगड़ा बबीता बोट निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट का मैसेज मिला। इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है चिन्मय महतो रेखा महतो शिवांश मंडल और कुमार सौरभ महतो का कदमा जमशेदपुर से और सुशीला देवी मंदूरकर सदानंद कुमार गौरव आरव और अर्पिता का डाबकी रोड अकोला से। हमें लिखा है वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार प्रमिला भावेश और सनी भावसार का मैसेज और इसके अलावा ये मैसेज हमें दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी बब्बू डब्बू का जॉन डिकेस्ट्रो रोजी पर्ल विलिस का हमें सहारनपुर से मैसेज मिला है। जगदीश कुमार राहुल ऋतिका नांगलोई से हमें लिख रहे हैं और ये मैसेज हमें मिला है अनिल ताम्रकर अमर ताम्रकर दिलीप कुमार राजू ताम्रकर और पूरे परिवार का और इसके अलावा इन्होंने हमें कहाँ से लिखा है शशपाल अकेला गाजियाबाद से हमें लिख रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल भाटिया सोनू भाटिया तमन्ना भाटिया का जमशेदपुर से और बिट्टू भाटिया रीटा भाटिया रजत और मयंक भाटिया झज्जर हरियाणा से। अलीका डबवाली से बसंत सिंह चंद राजकुमार कुलदीप गांधी का मैसेज मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन बिट्टू जैन संजीव जैन का मैसेज और हमें आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश और मैंडी पूरे परिवार के साथ हमें लिख रहे हैं। इसके अलावा शंकरलाल जायसवाल गणेश लाल शुभम प्रसाद अर्णव दुर्गेश्वरी राखी तृप्ति का हमें ये ताला महाराष्ट्र से मैसेज पहुंचा है। गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक विमला देवी योगेश कुमार दीपक कुमार कुमारी पूजा का मैसेज पहुंचा और हमें भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता रुद्र का ततरेंगी से राजेंद्र जटोलिया उषा जटोलिया दिल्ली नांगलोई से संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति और ओजस्वी यादव और रुपेंद्र राठौर अफरोज शेख इटा यूपी से हमें लिख रहे हैं और साथ में सतप्रकाश गोयल रेणु गोयल के साथ रोहिणी दिल्ली से पंजाब से हरजिंदर शिंदा जसविंदर जस्सी सीता और गीता का गांव नथाना से हमें ये मैसेज मिला और बहुत सारे मैसेजेस हैं पर दोस्त वक्त अब बहुत कम बचा है तो जल्दी से एक गीत और आप तक पहुंचा देती हूं और इस गीत की फरमाइश हमें लिखी है गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही शाहीन फातिमा अदनान खान और अनु खान ने। ये रहा

और दोस्तों दिल का मेल बॉक्स में इतना ही। मैं आपकी दोस्त आंजलिका क्रिस्टल वॉइस लेती हूँ इस सफर से विदा, लेकिन फिर से मुलाकात होगी 11:10 पर। सुनेंगे आप प्रायोजित कार्यक्रम और उसके बाद तस्वीर। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल चैनल के साथ। फिलहाल वक्त है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल की रेजीनगर में भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि तमिलनाडु की मदुरांतकम सीट पर टीवीके और धारापुरम पर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई है। असम की लोकसभा सीट नगांव पर हुए उपचुनाव की मतगणना में भाजपा उम्मीदवार आगे है। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर गिनती के दूसरे दौर के बाद ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक आनंद इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनगयम से 4,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के नए कर सुधारों का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री, सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने की संभावना है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अबीब जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। श्री सिंधिया ने कहा कि डिजिटल संचार के इस युग में भारतीय डाक सेवा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बदलाव का प्रयास कर रहा है। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाजी वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप इसे सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम मेरा वजूद।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद,
2: और मैं अदिति।
1: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। मेरा वजूद के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
2: क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है ना?
1: जिंदगी भर जो ढोते रहे औलाद का हर एक बोझ, आज बुढ़ापे में अपनों के वास्ते ही मोहताज हो गए। वो खाली कमरा और खिड़की से टकटकी लगाए आंखें बता रही हैं कि अपनों की बेरुखी से कैसे लाचार हो गए। लकड़ी के खिलौनों से जो कभी बहल जाते थे, आज वो जज्बातों से खेलना सीख गए।
3: बुढ़ापे की लाठी बनने का वादा था जिनका, वो आज हमें अकेला छोड़ आगे बढ़ गए। आंखों की रोशनी कम हुई तो नजरअंदाज करने लगे, हाथ कांपे तो सहारा देने से कतराने लगे, बच्चे बड़े हुए तो घरों के रास्ते बदल गए, माँ बाप वहीं रहे, बस अपनों के वास्ते मायने बदल गए।
1: दोस्तों, ये बात सच है कि बदलते वक्त के साथ हमारे समाज में भी बदलाव आए हैं। हमारे आज के बहुत सारे युवा नौजवान नौकरी, बिजनेस या हायर एजुकेशन के लिए शहर या देश से बाहर रहने लग जाते हैं, और उनमें से कुछ फिर वहीं के होकर रह जाते हैं,
3: और पीछे घर में रह जाते हैं उनके तन्हा माता पिता। कामयाब होना तो कोई बुरा नहीं, मगर इस कामयाबी की कीमत अपने पालनहार को देनी पड़े, क्या ये सही है? क्या सिर्फ चंद पैसे उनकी झोली में डाल देने से नौजवानों का फर्ज पूरा हो जाता है?
1: आंखों के चरागों में उजाले ना रहेंगे, आ जाओ कि फिर देखने वाले ना रहेंगे। जा शौक से, लेकिन पलट आने के लिए जा, हम देर तलक खुद को संभाले ना रहेंगे।

0: सारा दिन बस नाश्ता, लंच और डिनर। सबकी जरूरतें पूरी करते करते जाने कब मेरा खुद का वजूद कहीं खो गया। क्या मेरी पहचान बस यहीं तक है?
1: मेरा वजूद बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: आलिशान मकानों में अब माँ बाप के लिए जगह नहीं है। उनके हिस्से में सिर्फ घर का एक कोना या वृद्धाश्रम आता है। पाल पोस कर जिन्होंने उन्हें परिंदा बनाया था, आज वही परिंदा उन्हें अकेला छोड़कर उड़ जाता है और पीछे छोड़ जाता है माँ बाप की बाकी जिंदगी में दर्द और तन्हाई।
3: लेकिन अगर हम चाहें तो ऐसे बुजुर्ग लोगों के दर्द को कुछ हद तक तो कम कर ही सकते हैं, उनके अपने बच्चे ना सही, मगर हम और हमारे ऐसे बहुत से युवा नौजवान ये कर सकते हैं। बस इतना कीजिए कि अपने आसपास ऐसे अकेलेपन के शिकार परिवार पर थोड़ा ध्यान दें, उनके सुख दुख में उनके साथ ही बने, उनके साथ थोड़ा समय बिताएं।
2: माँ बाप का अकेलापन समाज की कोई अच्छाई नहीं है, इसलिए हम सभी को मिलकर इस बुराई से लड़ना होगा। जरा सोच कर देखिए कि माँ बाप के प्रति ये उदासीनता हमारे समाज को, उसकी सोच को और आने वाले कल को कहाँ ले जाएगी।
3: बूढ़े होते माँ बाप बेकार की चीज नहीं होते, बल्कि ये वो दरख्त होते हैं जिनकी छाँव में हम सदा ही सुरक्षित होते हैं। बाप जीना है जो ले जाता है ऊंचाई तक, माँ दुआ है जो सदा साया फिगन रहती है।
2: याद रहे, जब तक हमारे माँ बाप होते हैं हम तभी तक नाथ होते हैं, और जिस दिन हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं हम उस दिन अनाथ हो जाते हैं।

0: और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर। दोस्तों, प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल स्टेट के लाभ से जोड़ना है।
1: जीवन में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर से खड़े हो जाते हैं।
0: हमारा पता है मेरा वजूद, बताओ और कमाओ, सी ब्लॉक मार्केट 16, सेक्टर 41, नोएडा। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
1: एक बार फिर आज ही के दिन शुक्रवार सुबह 11:10 FM गोल्ड पर
0: हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। तब तक के लिए आनंद
0: और अदिति को इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार।

0: हम गृहिणियों को मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं। बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेजर सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
2: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी की सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355-387-21 पर।
3: इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
4: मन करता है कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, पर मुझे नौकरी देगा कौन?
5: आज तुम जैसी हजारों महिलाएं घर बैठे अपनी नॉलेज और नेटवर्क से लाखों कमा रही हैं।
4: कैसे?
1: मेरा वजूद, बताओ।

ਹੋਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ, ਸਭ ਬੜੀਆ ਹੋ ਨਾ? ਅਬ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਂ ਕਿਉਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ ਹਮ ਆਪਕੋ ਐਸੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਸੈਰ ਪਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪਰ ਆਪਕੋ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿਲਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਆਜ ਹਮ ਚਲੇਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। तो अमृतसर में क्या खास है जरूर बताऊंगी। 11:25 हो चुके हैं, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस और ये है आपका पसंदीदा चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। और आज तस्वीर के सफर में सैर अमृतसर की। अमृतसर पंजाब का एक खास शहर है और स्वर्ण मंदिर की वजह से शहर की पूरे विश्व में अलग पहचान है। अमृतसर की स्थापना 1579 में हुई थी। यह शहर पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से 230 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है और शहर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने की थी। सिखों के साथ ही यह शहर हिंदुओं के लिए भी खास है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ सीता जी ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में काफी वक्त बिताया था। यहीं भगवान राम और सीता जी के पुत्र लव और कुश का जन्म भी हुआ था। अमृतसर 16वीं शताब्दी में बने श्री दुर्गियाना मंदिर के लिए भी जाना जाता है जो स्वर्ण मंदिर जैसा दिखता है और इसे अक्सर चांदी का मंदिर कहा जाता है। यहाँ स्थित स्वर्ण मंदिर की स्थापना भी सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने की थी। जैसा कि मैंने बताया आपको, उन्होंने यहाँ तालाब का निर्माण भी करवाया था और इसी तालाब को अमृत का तालाब भी कहा जाता है, यानी अमृतसर, जिसके आधार पर शहर को अमृतसर कहा जाता है। तालाब के बीच में बना भव्य मंदिर गुरु रामदास के पुत्र अर्जुन देव जी ने बनवाया था और इस मंदिर में सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को रखा गया है। स्वर्ण मंदिर को हरि मंदिर या दरबार साहब के नाम से भी पुकारा जाता है। गोल्डन टेंपल के सेंट्रल सिख म्यूजियम में सिखों के त्याग और बलिदान की पेंटिंग्स आप देखने के लिए जा सकते हैं। और धार्मिक आस्था का प्रतीक स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेंपल अमृतसर का एक मेन अट्रैक्शन है, लेकिन इसके अलावा भी अमृतसर में बहुत कुछ है। सब कुछ बताऊंगी आपको इस सफर में, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा मेरे साथ तस्वीर में। तो फिर बने रहिए, यूं ही झूमते गाते इस सफर में आगे बढ़ते रहेंगे।

0: मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों का पराठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही ये आपको भरपूर ऊर्जा देती है। सही मात्रा और सही विधि के लिए आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूरी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: श्री अन्न यानी बाजरा, ज्वार, चौलाई आदि सुपाच्य, सुरक्षित और स्वास्थ्य वर्धक है। बच्चों के आहार में बाजरे को शामिल करने से कमजोरी और दुबलेपन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे राम वचन, ये क्या हाल बनाया हुआ है भाई? दुकान पूरी तरह अस्त व्यस्त, माल भी नहीं डलवाया, दुकानदारी नहीं करनी तूने?
4: अब क्या बताऊं भैया, धंधे में जब से घाटा लगा है बस घोर उदासी, काम में दिल नहीं लगता, मन करता है कहीं जाके मर जाऊं।
5: सावधान, ये लक्षण अवसाद यानी डिप्रेशन के भी हो सकते हैं। तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज ABAS और स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए, रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8

0: भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या आप जानते हैं कि सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण व्यायाम की एक प्रक्रिया है? दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ, पूरा दिन रहे ऊर्जावान।
3: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और 11:34:24 हो चुके हैं और आज है शुक्रवार, तो आज का दिन खास होता है। हमेशा आपको याद दिलाती हूँ, शाम 5:10 पर आज जरूर सुनिएगा पानी पर लिखी कहानी। और आज की कहानी है मेट्रो वाली लड़की। इसे लिखा है मंजू बत्रा ने, परिकल्पना निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती जी की। जरूर सुनिएगा इस कहानी को और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। शाम 5:10 पर पानी पर लिखी कहानी। और अब इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपको बता दूं, याद दिला दूं कि हम अमृतसर की सैर पर निकले हैं दोस्तों। आज अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को, जिसे हम गोल्डन टेंपल को जानते हैं इस तौर पर, और ये जो एक जगह है ये एक पवित्र स्थल है और ये सिखों के लिए तो खास है ही। यहाँ आने वाले टूरिस्ट भी यहाँ पर जरूर जाते हैं क्योंकि अमृतसर इस जगह के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, ये सिखों के लिए सबसे ज्यादा पूजनीय स्थानों में एक है और सबसे लोकप्रिय गुरुद्वारा है। गोल्ड से बने यानी सोने से बने इस गुरुद्वारे में पहले गोल्ड नहीं था। हर मंदिर साहिब, जिसे दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है, मूल रूप से 5वें सिख गुरु द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। अमृत का कुंड गुरु रामदास नामक चौथे गुरु द्वारा स्थापित किया गया था और 5वें गुरु ने पवित्र तालाब के बीच में एक मंदिर बनाने का फैसला किया था और ये गुरुद्वारा सिखों के लिए बनाया गया पहला तीर्थ स्थल था ताकि वो एक साथ यहां पर पूजा कर सके। और इसकी नींव एक मुस्लिम संत ने रखी थी और कई प्रमुख सिख नेताओं की देखरेख में गुरुद्वारा पूरा किया गया था। समय के साथ महाराजा रणजीत सिंह ने इसे सोने से बनाने का फैसला किया और जिसके बाद इसे स्वर्ण मंदिर का नाम मिला। आप भी गुरु नानक जयंती जैसे मौकों पर या फिर किसी ऐसे मौके पर जहां सिखों के लिए एक धार्मिक पर्व होता है तो आप यहां पर जरूर जाएं क्योंकि आपको यहां एक अलग ही रौनक देखने के लिए मिलेगी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी इस शहर का यानी अमृतसर का एक खास योगदान रहा है, अहम योगदान रहा है। यही जलियांवाला बाग का जो इतिहास है वो छिपा हुआ है, जिसमें अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई थी और ये घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी, जिसमें करीब 2000 मासूम लोगों ने शहादत दी थी। ये शहर समृद्ध व्यंजनों, पवित्र मंदिरों, लोक कला और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। अमृतसर के पश्चिम में लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित राम तीर्थ एक बड़ा तालाब और कई मंदिर हैं। इस जगह पर हर वर्ष कार्तिक की पूर्णिमा पर 4 दिवसीय मेला लगता है। देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों लोग इस पवित्र स्थान के दर्शन के लिए आते हैं। बहुत कुछ है बताने के लिए इस जगह के बारे में, जरूर बताऊंगी, पर इस गीत के बाद जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आशी रेखा, क्रिस्टल वॉइस।

पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के।

पंजाब की बात ही ऐसी है कि अगर आप यहाँ का जिक्र भी करें ना तो झूमने को मन करता है, पांव थिरकने लगते हैं, क्योंकि पंजाब का जो संगीत है, जो म्यूजिक है, वो सचमुच लाजवाब है ना। और अगर मैं बात करूं भाई यहाँ घूमने की कि अगर आप अमृतसर जाएं तो क्या कुछ घूमें, तो मैं आपको बता दूं कि अमृतसर घूमने के लिए हर साल बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पहुंचते हैं। पर्यटक यहाँ पर स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग, राम तीर्थ मंदिर, दुर्गियाना मंदिर, अटारी बॉर्डर, पार्टीशन म्यूजियम, हरिका वेटलैंड, पक्षी अभयारण्य, गोविंदगढ़ किला, सिद्ध शक्तिपीठ, लाल माता मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और तरन तारण गुरुद्वारा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें देखने के लिए यहाँ लोग पहुंचते हैं। और अगर आपको खाते खाते मतलब घूमने का मजा आता है भाई, आपको चलते चलते भूख लग जाती है, तो फिर यहाँ खाने के जो स्वाद है, जो जायके है, वो बहुत ही लाजवाब है। अगर यहाँ के व्यंजनों की बात करें तो अमृतसर में आपको पंजाबी पराठे, चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन, लस्सी का स्वाद चखने को मिलेगा। अमृतसर अपने स्वादिष्ट भोजन, रंग बिरंगे व्यंजनों और लजीज व्यंजनों के लिए जाना जाता है। अमृतसरी छोले भटूरे, अमृतसरी कुलचा, दाल मखनी, तंदूरी चिकन, मछली दुनिया भर में लोकप्रिय है भाई, तो यहाँ जाएं तो ये स्वाद चखना मत भूलिएगा। और अब आपको पहुंचना कैसे है ये बता दूं, यहाँ पहुंचने के लिए अमृतसर बस, हवाई अड्डा, जहाज, हवाई जहाज से, ट्रेन से, हर तरीके से आप यहाँ के जो कनेक्टिविटी है वो पा सकते हैं। यहाँ सबसे करीबी हवाई अड्डा राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, दुबई, लंदन, टोरंटो, ताशकंद सहित देश के देश, अलग अलग देशों, अलग अलग शहरों के लिए रेगुलर उड़ानें आपको मिल जाती हैं। ट्रेन से अगर आप यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन अमृतसर रेलवे स्टेशन है, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, आगरा, चंडीगढ़ सहित देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। और इसी तरह से अमृतसर सड़क मार्ग के जरिए भी देश के अलग अलग राज्यों से बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है। आपको यहाँ के लिए अलग अलग शहरों और राज्यों से नियमित बसें मिल जाएंगी। अमृतसर सिख समुदाय के लोगों के लिए बेहद मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर श्री हरमंदिर साहिब का गुरुद्वारा यानी स्वर्ण मंदिर है। सिर्फ सिख समुदाय के लोग ही नहीं, बल्कि अमृतसर शहर में जो भी आता है वो यहाँ पर जरूर एक बार जाता है। फिलहाल कहीं भी जाएं तो यहाँ जाकर शॉपिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दरअसल किसी भी जगह की मशहूर जो कल्चर से जुड़ने की जो बात होती है ना, वो एकदम खास होती है। खरीदारी के साथ साथ इसे जब आप अपने साथ संजो कर लेकर आते हैं तो ये यादगार कुछ अनोखी हो जाती है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप शॉपिंग के शौक

शौकीन है तो अमृतसर ट्रिप में पंजाब से जुड़ी चीजों को खरीदना बिल्कुल मत भूलिएगा। गोल्डन टेंपल के पास ही एक मार्केट लगती है जिसका नाम है जैमल सिंह मार्केट, तो आप यहां पर भी जा सकते हैं, पंजाबी कल्चर से जुड़ी चीजों की शॉपिंग कर सकते हैं। अमृतसर के जैमल सिंह मार्केट में से आप पंजाबी कल्चर से जुड़ी चीजों को खरीद कर ला सकते हैं। यहाँ पर्यटक जो हैं वो लोगों से काफी खरीदारी करते हैं और इस मार्केट में आपको पंजाब की ट्रेडिशनल कढ़ाई, फुलकारी, किए हुए दुपट्टे, सलवार सूट, पंजाबी स्टाइल, कलरफुल जुतियां खरीदने को मौका मिलेगा। मार्केट में चूड़ियां, इयररिंग्स, खाने पीने के सामान, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिल जाएंगी। अगर आप शॉपिंग लवर हैं तो आपके लिए सचमुच ये जगह सबसे खास होने वाली है, तो आप एक बार जरूर यहां पर जाइएगा। ये मार्केट काफी लंबे समय तक खुली रहती है दिन भर, तो आपको यहां पर काफी आसानी से बहुत सारी चीजें खरीदने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप अपनी कार से यहां जा रहे हैं तो फिर आपको बेहतर रहेगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ही करें, क्योंकि मार्केट में काफ़ी भीड़ होती है, तो अपनी गाड़ी लेकर ना जाएं। यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर आप जा सकते हैं शॉपिंग के अलावा। आप जैसे कि अटारी बॉर्डर, जलियांवाला बाग, ये दो जगह हैं जहां आप देशभक्ति की भावना को सचमुच महसूस कर सकते हैं और आप इस जगह का इतिहास यहां पर जान सकते हैं। दुर्गियाना मंदिर घूम सकते हैं आप, काल तख्त भी जा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें जैसा कि मैंने कहा चखने के लिए हैं यहां पर, वो सब तो आप चख ही सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस जगह की तो अमृतसर के कुछ खास त्योहार और मेले भी यहां पर बहुत खास होते हैं, जैसे कि बैसाखी का मेला, गुरपुरब, होला मोहल्ला या फिर रामतीर्थ मेला, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके मौकों पर अगर आप पहुंचते हैं तो यहां का एक अलग ही रंग आपको देखने के लिए मिलता है। कुछ और भी बताऊंगी इस जगह के बारे में, लेकिन इस गीत के बाद जुड़े रहेगा मेरे साथ।

दोस्तों, अमृतसर की आधिकारिक भाषा है पंजाबी। आप पाएंगे कि स्थानीय लोग इस भाषा में आराम से बातचीत करते हैं और अपने दैनिक काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर्यटक काफी भीड़ में पहुंचते हैं, तो इसलिए लोग हिंदी और अंग्रेजी भी भाषाओं के साथ बोलते हैं और इन भाषाओं से भी अच्छे से वाकिफ हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेहमान नवाजी का स्वभाव है यहाँ के लोगों का, और भाषा कोई बाधा नहीं है, यहाँ पर आसानी से आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं वहाँ के लोग। अमृतसर में स्थानीय निवासी हिंदी और अंग्रेजी में काफी पारंगत हैं, क्योंकि ये भाषाएं बाकी प्रवासियों, शिक्षा, उद्योगों और समग्र विकास के जरिए शहर में पहुंची है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो धार्मिक संस्कृति की, तो अमृतसर सिख धर्म की भूमि है, इसमें कोई शक नहीं। ये पहला नाम है जो सिख इतिहास को देखते हुए गुरुओं, उत्सवों आदि के बारे में जानने पर किसी के दिमाग में भी आता है। और आप शहर में शांति की भावना देखेंगे क्योंकि चारों ओर धार्मिक माहौल है, लेकिन सिखों की इतनी मजबूत पकड़ के बाद भी अन्य धर्मों को यहां पर आप देख सकते हैं। सद्भाव के साथ रहते हुए आपको शहर में कई हिंदू मंदिर मिलेंगे जहां लोग अपने विश्वास के कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और इस तरह धार्मिक महत्व की बात यहां पर की जाती है। संस्कृति, अलग अलग संस्कृतियों का मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की वेशभूषा बहुत खास है। अमृतसर में सिखों की बड़ी आबादी है, इसलिए आपको शहर में पगड़ीधारी पुरुष देखने को मिलेंगे। लोगों की सरों पर आपको अलग अलग रंगीन पगड़ियां दिखाई देंगी। और इसके अलावा धार्मिक पोशाकें पहने हुए भी लोग नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्वर्ण मंदिर है और बहुत ज्यादा यहाँ की मान्यता है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत से लोग आपको सिख धर्म की पोशाक में भी आपको नजर आएंगे। और इसके अलावा अमृतसर में महिलाएं आमतौर पर सूट पहनती हैं, ढके हुए कपड़ों में सहज रहती हैं, और ये एक धार्मिक स्थान है, इसलिए लोग अक्सर सिर को ढकते हैं। कपड़ों के मामले में भी ढके हुए कपड़े यहाँ पर पहने जाते हैं, क्योंकि ये एक सम्मान का तरीका है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ की पाक कला की, तो भाई देसी घी आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में आसानी से मिलेगा खाने के लिए। बहुत शौकीन होते हैं यहाँ के लोग देसी घी के, छाछ के, मक्खन के, तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से यहाँ पर मिलेंगी। शिल्प की बात करूँ तो यहाँ का जो शिल्प है वो भी अपने आप में खास है। यहाँ के सूट, दुपट्टे, इन सब में आपको हाथ से किया हुआ काम बहुत आसानी से देखने के लिए मिलेगा। और त्योहारों की जैसे मैंने बात की, तो गुरुपुरब, बसंत पंचमी, लोहड़ी, ये सारे त्योहार हैं जो ये शहर बहुत ही शौक से मनाता है, तो आपको यहाँ पर भी जरूर ऐसे मौकों पर एक बार जाना चाहिए। मेले, उत्सव यहाँ की परंपरा में शामिल है। और सच कहूँ तो ये शहर आपके लिए इतना खूबसूरत, इतना खास हो सकता है अगर आप यहाँ पर जाएं तो, क्योंकि ये अपने आप में ही एक अलग इतिहास को समेटे हुए है, एक अलग धर्म के तौर पर भी अगर मैं कहूं तो ये अपने आप में एक खास पहचान रखता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी की, तो सचमुच लाजवाब है। तो जब भी मौका मिले अमृतसर पहुंच जाइए, बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए, करने के लिए। फिलहाल एक और प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाती हूँ, और उसके बाद आगे सफर में क्या है जरूर बताऊंगी।

और इसी के साथ मैं आपकी दोस्त आर्चरिका क्रिस्टल वॉइस लेती हूँ आज के लिए आपसे विदा। फिर किसी रोज किसी और सफर में मुलाकात जरूर होगी। जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, क्योंकि हर दिन 24 घंटे आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर है इस चैनल पर। फिलहाल मैं चलती हूँ, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। वक्त है समाचारों का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद

0: 13,358 वोट मिले, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 4,876 वोट मिले। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे है, जबकि तमिलनाडु में सत्ताधारी मधुरांतकम में टीवीके और धारापुरम में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आगे है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार तमिलनाडु विधानसभा के मधुरांतकम और दारापुरम उपचुनावों में सत्ताधारी टीवीके पार्टी दोनों सीटों पर आगे चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े चार डिजिटल प्लेटफॉर्म को चार हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी इंश्योरेंस क्लेम पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में ईडीएआर, वाहन सारथी और इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति तरमन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने का अनुमान है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्चार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 787 अंक बढ़कर 72,381 पर, जबकि निफ्टी 254 अंक की बढ़त के साथ 22,486 पर था। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंध्रे कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिक्काल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of the Departmental Summit on Women and Child Development.

당근. लेकर ढेर सारी जानकारियां और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। आज के अंक में दोस्तों आपके साथ हूं मैं यानी आपकी रेडियो सखी कल्पना। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और जुड़े रहिए घर आंगन से एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ चैनल यानी कि 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर भी। और दोस्तों कहते हैं कि जो आंखें होती है ना वो व्यक्तित्व का आईना होती हैं, ये वो सब भी बता देती हैं जो हम किसी से छिपाना चाहते हैं। तो इसी बात पर अख्तर होशियारपुर साहब ने एक बहुत ही प्यारा सा शेर भी कहा है। उन्होंने कहा कि भाई जो लोग होते हैं ना, लोग आँखों को भी पढ़ लेते हैं, लोग आँखों को भी पढ़ लेते हैं, अपनी नज़रों को झुकाए रखना। तो अगर आपको कुछ छिपाना है तो भाई नज़रें मिलाना नहीं है, आपको अपनी नज़रें झुकाए रखना है।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत अभी आप जो सुन रहे थे तीन देविया फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। और देखिए, हर दिन अपने आप में जो होता है ना, वो बहुत ही खास होता है। तो आज 9 अक्टूबर का दिन भी कई महत्वपूर्ण अवसरों की याद दिलाता है। प्रादेशिक सेना दिवस, उत्कल मणि गोप बंधु दास जयंती और विश्व डाक दिवस सहित पुण्यतिथि रविन्द्र जैन जी की। आज इतने सारे जो महत्वपूर्ण अवसर हैं उन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रादेशिक सेना दिवस उन नागरिकों के साहस और समर्पण को नमन करने का अवसर है जो अपने पेशे के साथ साथ देश की सुरक्षा का दायित्व भी निभाते हैं। वहीं उत्कलमणि गोप बंधु दास की जयंती हमें सेवा, त्याग और मानवता का संदेश देती है। उन्होंने अपना जीवन समाज सुधार, शिक्षा और देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया, इसलिए आज हम सभी उनको बहुत ही भाव से याद कर रहे हैं। साथ ही आज है पुण्यतिथि पद्मश्री से सम्मानित रविन्द्र जैन की। उन्होंने अपने मधुर संगीत और कालजयी रचनाओं से भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया, उन्हें भी हमारे भावपूर्ण नमन। और आइए अब बात करते हैं उस सेवा की जिसने कभी दूरियों को चिट्ठियों से पाट दिया था। विश्व डाक दिवस हमें याद दिलाता है कि तकनीकी के इस दौर में भी डाक सेवाएं हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। कभी डाकिया अपनों की खुशियां लेकर आता था तो कभी उसकी चिट्ठी किसी के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने का माध्यम बन जाती थी। तो आइए इस प्यारी सी बातचीत के बाद, इस प्यारी सी जानकारी के बाद, अब हम आपको ऐसा ही गीत सुना देते हैं आए दिन बहार के फिल्म से, जिसे गाया है आशा भोंसले ने।

दोस्तों, जब खत लिखने की बात हो ही रही है तो आपसे भी मैं यही कहूंगी कि भाई आप भी अपना फीडबैक भेज दीजिए हमारी ईमेल आईडी पर, और हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। और आज है शुक्रवार का दिन दोस्तों, और घर आंगन कार्यक्रम हर शुक्रवार ये स्पेशल अंक लेकर आता है बुजुर्गों के लिए, जिसका शीर्षक होता है एक कदम बुजुर्गों की ओर। घर में बुजुर्ग हों तो घर सिर्फ बड़ा नहीं होता, उसमें अनुभव भी रहता है, यादें भी और रिश्तों की गर्माहट भी। लेकिन सवाल है, क्या हम उनके साथ सचमुच आत्मीय रिश्ता बना पा रहे हैं? इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, यकीन मानिए। कभी उनके पास बैठकर पूछिए, आज आपका दिन कैसा रहा, उनकी पुरानी बातें सुनिए। भले वही कहानी कई बार आप पहले भी सुन चुके हों, लेकिन एक बार दोबारा सुन लीजिए उनका मन रखने के लिए। घर के जो छोटे बड़े फैसले होते हैं ना, उसमें उनकी भी राय लीजिए। कभी उनकी पसंद का कोई गीत चला दीजिए, तो कभी पुरानी तस्वीरें साथ बैठकर देख लीजिए। और हाँ, उनकी मदद जरूर कीजिए, लेकिन हर काम उनसे छीनिए मत। कई बार ऐसा होता है, हम उनकी सुविधा के लिए सोचते हैं कि भाई ये नहीं कर पाएंगे, लाओ हम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो काम वो खुद कर सकते हैं वो उन्हें करने दीजिए। आखिर आत्मीयता का मतलब सिर्फ देखभाल करना तो नहीं होता, सम्मान के साथ साथ देना भी है। याद रखिए, बुजुर्गों को हमारे घर में सिर्फ एक कमरा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए हमारे समय में थोड़ी जगह, हमारी बातचीत में थोड़ी हिस्सेदारी और हमारे दिल में पूरी जगह। और उन्हें यही एहसास दिलाना है जो इस गीत में कहा जा रहा है। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत, नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे, फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में।

और दोस्तों कहते हैं ना कि भाई हम कई बार अपने बुजुर्गों से कहते हैं कि उम्र जो है वो बढ़ रही है, अब आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए. लेकिन जनाब आराम इतना भी मत कीजिए कि आपका जो शरीर है ना वो ये कहने लगे कि अब तो मैं उठना ही भूल गया. उम्र बढ़ने के साथ सक्रिय रहना और भी ज़रूरी हो जाता है. सुबह की थोड़ी सी जो हल्की सी सैर होती है, थोड़ी सी हल्की सी कसरत होती है, घर के छोटे मोटे काम या अपने किसी भी जो पसंदीदा आपका शौक है उसको जब समय देते हैं, तो ये सारी चीज़ें शरीर और मन को चुस्त रखने के बड़े अच्छे तरीके हैं. और अगर घुटने या कमर साथ ना दें तो अपनी क्षमता के अनुसार हल्की गतिविधि की जा सकती है. ज़रूरत हो तो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह भी लेनी चाहिए. मकसद देखिए दौड़ लगाना नहीं है कि भाई हम अपने बुजुर्गों से कहें कि नहीं दौड़ दौड़ के रहो ताकि आप चैतन्य रहो, चलते रहो. भाई उनको चलते फिरते और आत्मनिर्भर बनाए रखने के लिए थोड़ा सा गतिशील होना ज़रूरी है. इसलिए करना क्या है कि भाई उम्र को देखकर खुद को रोकिए मत. बच्चों से भी कहिए, हमारे पास अनुभव भी है और ऊर्जा भी, क्योंकि जो उम्र बढ़ना है वो तो बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है. लेकिन जिंदगी से किनारा कर लेना जरूरी नहीं. सक्रिय रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने अनुभवों से अगली पीढ़ी को भी रोशन करते रहिए. और याद रखिए कि भाई किसी ने कहा है ना, ये बात कही है तो इसलिए मैं याद दिलाती हूँ कि भाई याद रखिए, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं. तो इसलिए जब तक भी आप में शरीर में क्षमताएं हैं उनको बढ़ाते रहिए, उनको मेंटेन रखिए. और इस जानकारी के बाद सुनिए ये प्यारा सा गीत आराधना फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की प्यारी सी आवाज में.

दोस्तों देखिए, अगर घर में हमारे आपके माता पिता या दादा दादी हैं तो उनके लिए सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी रखना बहुत काम की बात है। लेकिन अक्सर सवाल होता है कि कौन सी योजना हमारे काम की है और इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी। इसी काम को आसान बनाने के लिए 2026 में सरकार ने जीवन ऐप शुरू किया है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी सरकारी योजनाओं, सुविधाओं, मदद और जरूरी सेवाओं की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। और अगर कभी किसी बुजुर्ग को मदद या सही जानकारी की जरूरत पड़े तो 1-4-5-6-7 एल्डर लाइन पर भी संपर्क किया जा सकता है। तो घर के युवा साथियों, एक छोटा सा काम आपको जरूर करना है, वो ये कि भाई अपने माता पिता या दादा दादी को इस ऐप और हेल्पलाइन के बारे में बताइए, क्योंकि सरकारी सुविधा तभी सच में काम की बनती है जब उसकी जानकारी सही व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। और याद रखिए, सिर्फ बुजुर्गों की देखभाल ही हमारी जिम्मेदारी नहीं, उनके सम्मान और सुरक्षित भविष्य में भी हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि वो हमारे ऊपर गर्व करें कि भाई हमारे बच्चे हमारा कितना ध्यान रखते हैं।

दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, और फिल्म का नाम लव इन टोक्यो। और देखिए, दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है, उन्होंने कहा है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और ये पत्थर किसी भी उम्र में उछाला जा सकता है। तो आइए आज आपको एक ऐसी ही प्रेरक कहानी सुनाती हूँ, तमिलनाडु की गिरजा अम्मा की, जिनकी सराहना स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में की। गिरजा अम्मा जी वरिष्ठ शिक्षाविद हैं और करीब 15 स्कूलों से जुड़ी हैं। उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों को देश के सैनिकों के लिए प्रतिदिन 1 रुपये योगदान देने के लिए प्रेरित किया। एक साल में प्रत्येक बच्चे से ₹365 जमा हुए और हजारों बच्चों के छोटे छोटे योगदान से लगभग 40 लाख की राशि इकट्ठा हुई। गिरजा अम्मा जी ने ये पूरी राशि सैनिकों के लिए प्रधानमंत्री को चेक के रूप में

सौंप दी। प्रधानमंत्री जी ने उनके समर्पण को बहुत ही सराहा और साथ ही राष्ट्र निर्माण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के रूप में रेखांकित किया और कहा कि उनका देशभक्त का जो ये भाव है हर भारतीय को प्रेरित करता है। उम्र चाहे कितनी भी हो, अगर सोच में देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और देखिए ना, किसी ने एक ये भी बात कही है कि भाई मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। इसलिए प्रयास करते रहिए, क्या पता आपको क्या मिल जाए। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत संगीत हिमालय की गोद में फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने।

बिल्कुल सही बात है दोस्तों भाई, मन हमारा खिल जाता है जब हमारे मन की चीज़ें होती हैं। और देखिए, आप घर आंगन कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और आप सुन रहे हैं मेरे साथ घर आंगन, और मैं हूं आपकी रेडियो सखी कल्पना। और आज का कार्यक्रम श्रोताओं बुजुर्गों को समर्पित है, तो आइए एक कविता अपने बुजुर्गों के लिए सुनाती हूँ कि थक गए हैं पाँव तो क्या, हौसले अभी जवान हैं, घर के हर एक कोने में आपके ही निशान हैं, आपने उंगली थाम के चलना हमें सिखाया था, वो दिन भी याद है जब गिरने पर उठाया था, आप घर की छांव हैं, आपसे ही घर घर लगता है, आप रहें तो उम्र का हर मौसम थोड़ा और सुंदर लगता है, बस इतना सा साथ हमारा, आप कभी अकेले ना हों, आपकी आंखों की हर नमी में हम आपके अपनों के मेले हों। तो भाई अपने बुजुर्गों को भी हमेशा ये एहसास दिलाते रहिए दोस्तों कि आप उनके साथ हैं, और कभी उनका हाथ में हाथ पकड़ के बैठकर उनसे दो बातें कीजिए, उनके मन की भी जानिए, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ये कविता भी उन्हें सुना सकते हैं।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत याराना फिल्म से आप अभी सुन रहे थे आवाज़ किशोर कुमार की। और आइए आज रसोई में कुछ ऐसा बनाते हैं जो हमारे बुजुर्गों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, थोड़ा हटकर है लेकिन बनाने में बिल्कुल आसान है। मखाना मूंग दाल का नरम उपमा। इसके लिए आपको चाहिए एक छोटी कटोरी मूंग दाल, एक कटोरी मखाना, थोड़ा सा अदरक, जीरा चाहिए, बारीक कटी हुई गाजर या दूसरी जो भी सब्जियां आपको पसंद हो वो चाहिए, और थोड़ा सा तेल या घी चाहिए, नमक और पानी भी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि भाई मूंग दाल को 15-20 मिनट भिगो लें, मखानों को हल्का भूनकर दरदरा पीस लें। अब कढ़ाही में थोड़ा तेल या घी डालकर जीरा और अदरक भूनें, फिर सब्जियां डालकर हल्का पकाएं। इसमें भीगी हुई मूंग दाल और पिसे हुए जो मखाने हैं वो डाल दें। पानी डालकर धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक उपमा नरम ना हो जाए। मूंग दाल से प्रोटीन और मखाने से प्रोटीन के साथ कई पोषक तत्व मिलते हैं। सब्जियां जो होती हैं इसमें, उनमें फाइबर और दूसरे पोषक तत्व भी रहते हैं, और होता क्या है कि भाई नरम होने के कारण इसे चबाना भी आसान रहता है, तो बुजुर्गों के लिए खाने की भी दिक्कत नहीं होती, वो इसे ईजिली खा सकते हैं। साथ ही इसमें नमक मसाला और तेल जो है वो हल्का ही रहता है, तो इस लिहाज से भी वो उनके लिए अच्छा है। तो इस बार आपको करना क्या है कि भाई नाश्ते में कुछ नया आजमाइए, और जो मैंने अभी आपको बताया है मखाना मूंग दाल का नरम उपमा, इस बार वो भी बनाकर अपने बुजुर्गों को खिलाइए और फिर देखिए स्वाद भी बदलेगा और नाश्ते में पौष्टिकता भी जुड़ेगी। तो इतनी अच्छी जानकारी के बाद अब आपको एक प्यारा सा गीत भी सुनवा देती हूँ। तो आइए ये गीत सुनते हैं एक फूल दो माली फिल्म से आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

श्रोताओं, देखिए, हम किताबों की तरह हैं। अधिकांश लोग सिर्फ हमारा कवर देखते हैं, कुछ लोग भूमिका पढ़ते हैं, बहुत लोग आलोचकों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम ये जान पाते हैं कि हमारे भीतर आखिर है क्या। और देखिए, इन्हीं भावों पर किसी ने कही है ये पंक्तियाँ कि आँखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ, इसने मुझे छूकर नहीं देखा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फागुन फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपको सुनवाती हूँ। और इस गीत

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दिल्ली में दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर भारी यातायात की आशंका को देखते हुए लिया गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक

0: मिशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। यह निर्णय नई दिल्ली क्षेत्र में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल 12 से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहेगा। इसमें उत्तरी इंग्लैंड के विभिन्न हिस्सों से करीब 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ग्रेट नॉर्थ ट्रेड मिशन का उद्देश्य भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतर्गत व्यापार तथा निवेश के अवसर तलाशना है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत के संकल्प और देश तथा उसके नागरिकों की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। घरेलू शेयर बाजार का संविदी सूचकांक आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 756 अंक बढ़कर 72,350 पर, जबकि निफ्टी 253 अंक बढ़कर 22,485 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है दोपहर के 1:11 और 5 सेकंड्स। मैं आपका रेडियो हम सफर राम प्रकाश

दोस्तों, भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी पन्नों पर उतारा जाएगा उसमें एक ऐसे फनकार का जिक्र सुनहरे अक्षरों में होगा जिसने सिल्वर स्क्रीन पर अपनी कविताओं को उकेरा। एक ऐसा फिल्मकार जिसकी कैमरे की नजर इतनी गहरी थी कि वो इंसान की रूह के भीतर झांक लेती थी, जिसने अपनी फिल्मों में रोशनी और परछाइयों का ऐसा खेल रचा जो आज भी फिल्म संस्थानों में पढ़ाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता, निर्माता और निर्देशक गुरुदत्त साहब के बारे में। गुरुदत्त महज एक फिल्म मेकर नहीं थे, वो सेल्यूलॉइड के एक ऐसे कवि थे जिन्होंने फिल्मों का हर फ्रेम एक पेंटिंग की तरह मुकम्मल करके रखा था। उनकी फिल्मों में इसकी खूबसूरती बखूबी नजर आती थी। उनकी फिल्मों की सादगी, गहरा फलसफा और किरदारों की कश्मकश दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए घर कर जाती थी। तो आइए आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं उनकी ही एक ऐसी ही कालजयी फिल्म के एक बेहद ही प्यारे गीत के साथ।

गुरुदत्त साहब का जन्म 9 जुलाई 1925 को कर्नाटक के एक पढ़े लिखे ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। बचपन से ही कला और संस्कृति के प्रति उनका रुझान बहुत गहरा था। उनके इसी कलात्मक झुकाव को देखते हुए उन्हें मशहूर नर्तक उदय शंकर की अल्मोड़ा स्थित डांस एकेडमी में नृत्य सीखने भेजा गया। शायद यही वजह थी कि उनकी फिल्मों के दृश्यों में एक अनोखी लय और ताल नजर आती थी। करियर की शुरुआत में उन्होंने प्रभात कंपनी पुणे में एक कोरियोग्राफर और सहायक निर्देशक के रूप में काम शुरू किया, जहां उनके अभिनय और निर्देशन की नींव बेहद मजबूत हुई।

दोस्तों, प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने के दौरान ही गुरुदत्त की मुलाकात सदाबहार अभिनेता देवानंद से हुई। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और उन्होंने एक वादा किया कि देवानंद अगर फिल्म बनाएंगे तो गुरुदत्त उसका निर्देशन करेंगे। और इसी वादे के तहत देवानंद ने अपनी कंपनी नवकेतन की फिल्म बाजी का निर्देशन गुरुदत्त को सौंपा। ये फिल्म उनके करियर का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। बात करें गुरुदत्त की अनूठी शैली की, तो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी 100 मिलीमीटर लेंस का इस्तेमाल करके क्लोजअप शॉट्स लेना, जिससे किरदार की आंखों की हर भावना पर्दे पर जीवंत हो उठती थी। उनकी फिल्मों का प्रकाश और छाया यानी लाइट एंड शेड का कॉम्बिनेशन आज भी पूरी दुनिया के लिए मास्टर क्लास है।

0: दोस्तों, कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: आंवला विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का पावर हाउस है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा व बालों को स्वस्थ रखता है। प्रतिदिन आंवले का सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
2: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
4: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
3: फॉर्म 7, गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
4: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
3: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
4: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
5: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: मिलेट्स प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो कि गेहूं का एक उत्तम पौष्टिक एवं फाइबर युक्त विकल्प है। मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि ग्लूटेन फ्री अनाज है, जिनका उपयोग रोटी, दलिया और खिचड़ी आदि बनाने में किया जा सकता है।
2: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। दोस्तों, गुरुदत्त साहब की एक और बड़ी खासियत थी उनकी पारखी नजर। उन्होंने अपने सिनेमाई सफर में दिग्गजों की एक पूरी टीम तैयार की। कैमरामैन वी के मूर्ति के साथ उनकी जुगलबंदी ने सिनेमा को वो दृश्य दिए जो कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। लेखक अबरार अलवी, गीतकार साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, संगीतकार एस डी बर्मन और ओपी नैयर के साथ मिलकर उन्होंने एक से बढ़कर एक जादुई कृतियां रची। इसके अलावा कॉमेडियन जॉनी वॉकर के लिए उनकी फिल्मों में हमेशा एक खास जगह होती थी। दोस्तों, गुरुदत्त की फिल्मों में गीता दत्त की मखमली आवाज और वाहिदा रहमान का खूबसूरत अभिनय भारतीय सिनेमा की सबसे सुनहरी यादों में गिना जाता है।

बात करें गुरुदत्त के अभिनय और निर्देशन से सजी कुछ बेहतरीन और यादगार फिल्मों की, तो उन्होंने हिंदी सिनेमा को फिल्मों के रूप में ऐसे तोहफे दिए जो सदियों तक याद रखे जाएंगे। फिल्म प्यासा, कागज के फूल, साही बीबी और गुलाम, चौधरी का चांद, मिस्टर एंड मिसेस 55, आर पार और बाजी, ये महज फिल्म नहीं है बल्कि सिनेमा की टेक्स्ट बुक है। गुरुदत्त साहब अपनी फिल्मों के हर पहलू को खुद तराशते थे, फिर चाहे वो गानों का फिल्मांकन हो या डायलॉग्स की अदायगी, हर जगह उनका परफेक्शनिस्ट अंदाज साफ झलकता था।

दोस्तों, गुरुदत्त साहब के बेमिसाल काम ने उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिलाए। उनके द्वारा निर्मित फिल्म साहिब बीबी और गुलाम ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। उनकी फिल्म प्यासा और कागज के फूल को दुनिया भर के फिल्म समारोहों में आज भी महानतम फिल्मों की सूची में रखा जाता है। यहां तक कि फेमस टाइम मैगजीन ने फिल्म प्यासा को दुनिया की 100 सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शामिल किया। भारत सरकार ने सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान को सराहते हुए उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था।

0: दोस्तों, कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों का पराठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही ये आपको भरपूर ऊर्जा देती है। सही मात्रा और सही विधि के लिए आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूरी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
2: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: मीहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
4: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
3: ओह रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
4: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
3: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
4: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपनी नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेवी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेवी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेवी सारथी ऐप।
1: नींद नहीं आती हर रातों में,
2: रातों को नींद ना आना, कच्ची नींद लगना, नींद का बार बार टूट जाना, ये लक्षण हो सकते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर के। ये एक मनोरोग भी हो सकता है। समय ना गवाएं, तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज एबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का तावांग केंद्र है। आज सन 2026 अक्टूबर महीने की 9 तारीख व दिन है शुक्रवार। अब से लेकर रात 9:16 तक हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम निष्पादक श्री थुतन टशी, मुनपम उद्घोषक श्री संगे टशी, तकनीकी अभियंता श्री तानिंग तको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अच्युत बर्मन और न्यूटन बोरा और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका टाशी छुटन। आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है।

ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिससे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।

0: daughter is not a burden but a source of strength for the family and society. Over the past 10 years, Beti Bachao Beti Padhao has grown beyond a government scheme into a powerful social movement promoting the dignity, education and equal opportunities of the girl child. With Jitendra Dwivedi, Saleha Ghazi, Akashwani News, Jaipur.
1: The External Affairs Ministry has said that U.S. Department of Labor's decision concerning the Permanent Labor Certification PERM program for certain companies is distinct from the H-1B visa program. The ministry in a statement said the suspension of PERM applications does not by itself affect the validity of existing H-1B visas or the status of H-1B visa holders and their dependents. It added that though there could be some impact on the permanent residency or green card process of eligible employees of the affected companies. Earlier, the Trump administration had announced the suspension of a key employment-based green card process for 8 major technology and outsourcing companies, including Indian firms Infosys, TCS, Wipro, and HCL. The action also covers Cognizant, Capgemini, Microsoft, and Adobe. In cricket, India will take on the West Indies in the second of the 5-match T20 international series in Ranchi today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. India lead the series 1-0 after winning the opening match, with skipper Shreyas Iyer's century powering the hosts to victory. The Inter Meteorological Department IMD forecast heavy rainfall accompanied by thunderstorms, lightning and gusty winds over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Heavy rainfall is also likely to prevail over South Interior Karnataka and Uttarakhand during the day. IMD said Lakshadweep, Bihar, Andhra Pradesh, East Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha, West Bengal and Sikkim are also expected to witness thunderstorms, lightning and gusty winds today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi may remain closed from 9 p.m. today till tomorrow. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow stand cancelled at source stations. Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. All India NR Congress wins the Tarun Chavadi Assembly constituency in Puducherry, counting on 4 Assembly seats and 1 Lok Sabha seat underway. Ministry of External Affairs clarifies U.S. suspension of PERM applications does not affect H-1B visas. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका के पीईआरएम आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
3: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था,

0: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में आईआईटी जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस एक रेस्तरां में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रूपये से घटकर 8 रूपये से भी कम रह गई है।
3: 550 मिलियन यूजर्स। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा। इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द
0: स्टैंडर्ड सेटिंग टेबल। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरक

0: बैंकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
1: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, ईडीएआर, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए ईडीएआर पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची HH1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
2: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही है। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंगानुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य

0: सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H1B वीजा की वैधता या H1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक की उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्रीय कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इस बीच कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टांचावडी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। इसमें आज आप सुन सकेंगे गांधी स्मृति और हिंदी भक्ति गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गांधी स्मृति से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे देश एवं धार्मिक एकता विषय पर गांधी जी के विचार।

0: ولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم.
1: गांधी स्मृति। देश की एकता पर बोलते हुए गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा है कि जब सभी धर्मों के धर्मावलंबी परस्पर आपसी सौहार्द के साथ रहने लगेंगे, उनके हृदय स्वच्छ और पवित्र हो जाएंगे और वे कभी आपस में किसी बात पर झगड़ेंगे नहीं, तभी देश की एकता सही अर्थों में सुदृढ़ होगी। तब सर कहीं बाहर नहीं, यही होगा हमारे पास। लीजिए बाबूजी की ही वाणी में सुनिए देश की एकता पर यह प्रवचन।
2: कवि ने कहा है, और मैंने तो कहीं यहां पढ़ा, उसने कहा है कि अगर आपको जन्नत देखना है तो जन्नत को बाहर नहीं हुआ है, वो तो एक बगीचा के लिए कहा है। वो तो उस्ताद लेते हैं ना लिखने वाले, तो वो तो लिखा है तो वो उर्दू में, लेकिन मैंने वो पढ़ा, वो भी बहुत वर्षों के पहले जब मैं छोटा था तब की बात है, लेकिन मैंने वो याद रखा कि क्या खूबसूरत चीज है। उसको मैं जन्नत नहीं मानता, जन्नत ऐसे आता नहीं है नीचे से, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसी शरीफ मुसलमान बन जाए, शरीफ हिंदू बन, शरीफ सिख बन, सब के सब भाई भाई बन जाए, तब तो मैं कहूँगा कि वही शेर जो है वो शेर सब दरवाजे पर लगाए जाए, तो उसे वाई नहीं लगेगा, यहाँ भी लगेगा, लेकिन यहाँ कब लगेगा कि अगर पाकिस्तान के लोग सचमुच इस तरह से पाक बन जाए, दिल साफ हो जाए, दिल में एक और कहना दूसरा और करना तीसरा, वो तो नहीं है उसमें से, तो पाकिस्तान वो तो दूसरे साल हो जाता है, लेकिन अगर वो बदल जाए और शक्ल बदले कि वो तो अपना दिल को बिल्कुल साफ कर दिया हो, यहाँ शैतान में देखता है, खुदा बिराजता है, ऐसा कर ले तो कह सकते हैं कि जन्नत बाहर नहीं पड़ा है, जन्नत तो यहाँ है। अरे लोगों आइए, जन्नत में रहना है, जन्नत में देखना है, तो इस दरवाजा में प्रवेश करो, ऐसे ही पीछे तो उससे हम मुकाबला करेंगे और हम उससे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि यहाँ भी पाकिस्तान में तो है, ऐसे ही हम हैं, पाकिस्तान में हमारे भाई है, हम इनके भाई है, वो हमारे भाई है, हम सब दोनों हिंदुस्तान के टुकड़े तो हैं, रह जाए उसे, रहा तो क्या, न रहा तो क्या, हमारा दिल एक हो गया तो भूगोल में टुकड़े रहे तो उससे क्या बना, दोनों हुकूमत अलग अलग कही जाए तो भी क्या हुआ, सारी हिंदुस्तान दुनिया की हुकूमत एक तो नहीं होगी, अलग अलग रहे लेकिन दिल एक मिल

गया हमारा, तो पीछे हुकूमत 50 रहे 500 रहे, उससे मुझको क्या आपको क्या पड़ी है। मैं तो कहता हूँ ना कि 7000 हिंदुस्तान की देहात है, तो उस 7000 देहात की वो हुकूमत बनी है सामान, उसमें कोई दिक्कत आपको ना आ सकती है। मुझको बड़ा अच्छा है, उनका व्यवहार भी बहुत छोटा हो जाएगा, अच्छा होगा, समझ होगा, और तब पीछे वो देहातों का काम तो ये बहने पड़ी है उसके हाथ में छोड़ सकते हैं आप आराम से। ऐसी वो खूबसूरत चीज है, तो मुझको तो खेते के लिए भी घोंस में पी लेता हूँ। और कोई तो कहे कि तो पीछा बेवकूफ आदमी है कि एक छोटा सा फाका करता है और उसमें से ऐसी चीज का क्यों वो आशा रखता है, लेकिन मैं क्या करूं, बना हूं इसे। और वो बचपन से छोटा था, जब मुझको पता भी नहीं था कि अखबार क्या चीज है, पता नहीं था। ये बात आप समझे कि मैं सच्ची कहता हूँ आपको, कोई बनाई हुई बात नहीं कहता हूँ। मैं अखबारों को भी पढ़ना जानता नहीं था, पढ़ता नहीं था। अंग्रेजी मुझको कहाँ इतना आता था, अंग्रेजी बड़ी मुसीबत से थोड़ा पढ़ता था, और ऐसा गुजराती भद्दा जान लेता था। वो आदमी अखबार पढ़ना कैसे जान सकेगा, उसने लिखा है क्या, कैसे पढ़ेगा, ऐसा अनजान आदमी। तब से मेरा ख्वाब रहा है कि हिंदुस्तान सब में, वो राजकोट में नहीं, काठियावाड़ में नहीं, सारा हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सिख सब एक बनकर रहे, और एक बनकर रहे तो पीछे हम तो यहाँ बड़े आराम से रह सकते हैं, ये मेरा ख्वाब। तो अगर लोग मुझको सुनाते हैं, सब जगह से टार देते हैं, तो पीछे मैं भी मूर्ख आदमी तो हूँ, तो इसलिए मैं मान लेता हूँ कि शायद वो ख्वाब स्वराज तो आया, वो तो निकलना है, उसको मैं स्वराज मानता भी नहीं, लेकिन इसी जन्म में जो उस वक्त एक जवानी में, और जवानी भी शुरू होती थी, उसमें ये ख्वाब मैंने देखा, और वो ख्वाब क्या आज सच्चा होता है। तो मैं आपको कहता हूँ कि एक मैं तो बुरा हो गया ना, मरने के किनारे पर बैठा, लेकिन मेरा दिल नाचेगा, और एक छोटा ये यहाँ लड़के लड़कियाँ है ना, इस तरह से ये बुरा नाचेगा। अच्छा, हिंदुस्तान में तो सब खेल हो गया, हिंदू मुसलमान कोई आपस आपस लड़ते भिड़ते नहीं है, और इस तरह से रहते हैं। हाँ, आप लोग सब मदद करें, और पाकिस्तान के लोग वो सब सुने, मेरी आह क्या सुनना था, लेकिन ईश्वर मेरे पास से बुलाता है, तो बात तो सच्ची, वो कहता है बुरा मूर्ख है, उससे क्या हुआ, तो उसकी बात है, ऐसा करो, मुसलमान मान ले, हिंदू मान ले, सिख मान ले, पारसी मान ले, ईसाई मान ले, और सब भूल जाए कि कभी हम दुश्मन थे, कभी हम अलग अलग थे, हम सबका धर्म है, अपने अपने धर्म में वो कायम रहे, अच्छे बने, तो सब धर्म एक साथ चलते हैं, एक पीछे कोई देखेगा ही नहीं कि वो मुसलमान है कि पारसी है, शरीफ आदमी है, ऐसा कहा जाएगा। इस तरह से दोनों हिंदुस्तान बन जाए तो मैं तो नाचूंगा, लेकिन आपको भी नाचना ही पड़ेगा, और आप नाचेंगे नचाएगा क्या, वो तो जो वो तो सच्चाई नशा है कि जब वो ईश्वर हमको वो नशा पिला देगा, और ऐसी दुनिया यहाँ बन रही है कि जिसमें किसी को कुछ डर ही नहीं रहता है, कहीं भी एक डर रहता है, और कोई पूछे कि आप लोग किससे डरते हैं, तो कहें कि हम तो किसी से नहीं डरते हैं, एक ईश्वर पड़ा है, वहाँ पड़ा है और हमारे दिल में पड़ा है, हृदय आकाश में पड़ा है और इस आकाश में पड़ा है, उस ईश्वर से हम डरते हैं, दूसरे किसी से नहीं डरते हैं। अरे लेकिन ये पहाड़ जैसा पठान है, सिख है, उसे नहीं डरते हैं, मैं तो डर जाता हूँ, तो कहें कि तुम तो ईश्वर से नहीं डरते हैं, मैं तो ईश्वर से डरता हूँ, लड़के लड़कियाँ अगर डरते हैं ईश्वर से, दूसरे को तो कह सकते हैं, ऐसा मैं तो हिंदुस्तान को देखना चाहता हूँ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देश एवं धार्मिक एकता विषय पर गांधी जी के विचार कार्यक्रम गांधी स्मृति में। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आप सुन रहे कार्यक्रम वंदना। इसी कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं मनहर उदास की आवाज में चयन हिंदी भक्ति गीत।
1: लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य,

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जुगमेंद्र जी और साथियों की आवाज में चंद लादाख की लोकगीत। इसी के साथ आज का विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग की 9वीं कक्षा की छात्रा चीन पैटर्न से एक ऐसी महिला जो मुझे प्रेरित करती है विषय पर चंद शब्द।
1: ताशी दिलिक एन नमस्कार। आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं कुमारी श्रीन पेटोन, पीएम श्री जेएनवी तवांग में कक्षा 9वीं की छात्रा हूं। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय है एक ऐसी महिला जो मुझे प्रेरित करती है। माँ, तेरी ममता की छाव में हर दुख मिट जाता है, तेरी मुस्कुराहट से मेरा हर दिन सच जाता है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर सच यही है कि माँ के बिना जीवन अधूरा सा रह जाता है। अक्सर सभी के जीवन में एक ऐसी महिला या पुरुष होता है जो उन्हें प्रेरित करते हैं। एक ऐसी महिला है जो मुझे प्रेरित करती है, वह कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ है। माँ मेरे लिए सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। मेरी माँ का नाम पेमा जांगमू है। उनका जन्म लुमला के छोटे से गाँव ब्लैटिंग में हुआ। मेरी माँ एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन बहुत मजबूत महिला है। वह हमेशा मेहनत करती है और कभी हार नहीं मानती। वह सूर्य के उगने से पहले उठकर घर के हर कामों को करती है। वह न केवल घर बल्कि परिवार की जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छे से निभाती है। मेरी माँ सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे बाद को सोती है। फिर भी न जाने क्यों मैंने मेरी माँ को कभी थकते नहीं देखा, न जाने क्यों उन्हें कभी शिकायत करते नहीं सुना। मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई, उनके पास डिग्रियां नहीं है, फिर भी दुनिया की समझ उनके पास सबसे ज्यादा है। किसी ने सही कहा है कि माँ भगवान का दूसरा रूप होता है। जब मैं दुखी होती हूँ तो मेरी माँ की एक मुस्कान देख

0: मेरी सारे गम दूर हो जाते हैं। मेरी माँ का जिंदगी आसान नहीं रहा, उन्होंने अपने सपनों को त्याग हमारे परिवार के लिए अपनी जीवन समर्पित कर दिए। कई बार उन्होंने अपनी इच्छाओं को दबाकर हमारे जरूरतों को पूरा किया। जब घर की आर्थिक स्थितियाँ खराब थी, फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। हल्की सी मुस्कान लेकर उन्होंने मजबूत बनकर आगे बढ़ते रहे। उनकी यही ताकत और समझदारी मुझे हर दिन प्रेरित करती है। मेरी माँ ने मुझे ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करना सिखाया है। वह हमेशा कहती है कि अगर हम दिल से कोशिश करें तो सपनों को पूरा किया जा सकता है। उनकी देर और प्यार मुझे आगे बढ़ने का ताकत देता है। मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ नहीं बल्कि मेरी पहली गुरु, प्रिय मित्र और मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा भी है। भविष्य में मैं उनकी ही तरह अच्छी, ईमानदार और मेहनती बनना चाहती हूँ। आखिर में मैं यह कहकर अपनी बातों को विराम देना चाहती हूँ कि माँ तो माँ होती है, पहचान लेती है कि आंखें सोने से लाल हुई है या रोने से। धन्यवाद। जय हिंद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की विद्यालय तवांग की नौवीं कक्षा की छात्रा चरण पैटर्न से एक ऐसी महिला जो मुझे प्रेरित करती है विषय पर चंद शब्द। इसी के साथ कार्यक्रम मेरी बात यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे राहत फतेह अली खान की आवाज में फिल्म सुल्तान से। इरशाद कामिल के लिए इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सत्यमेव जयते 2 से गीत जारा इस खान और जास मानक की आवाज में। शब्द रचना था जास मानक का व संगीत था तनिष्क बागची का। आप सुन रहे कार्यक्रम नारी संगीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे जावेद अख्तर द्वारा शब्द फिल्म एक दीवाना था से। लियोन

श्रोताओं, अभी आपने सुना सत्यमेव जयते टू से गीत जारा इस खान और जास मानक की आवाज में, शब्द रचना था जास मानक का व संगीत था दनिष्क बागची का। आप सुन रहे कार्यक्रम नारी संगीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे जावेद अख्तर द्वारा शब्द फिल्म एक दीवाना था से। लियोन डिसूजा और सुजैन डिमेलो की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है ए आर रहमान ने।

0: फिल्म एक दीवाना था किसी गीत के साथ कार्यक्रम नारी संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर की 3:50 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस संदेश के बाद।
1: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
2: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
1: RBI कहता है जानकार बनिए,
2: सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे अखिल सचदेवा और मंचिल गुजराल की आवाज में फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से। गीत को शब्द व संगीत है अखिल सचदेवा ने।

अभी आपने सुना फिल्म कबीर सिंह से गीत साचेत टंडन की आवाज में गीतकार थे इरशाद कामिल व संगीत था साचेत परंपरा का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म शेरशाह से जुबिन नौटियाल और आशीष कौर की आवाज में। गीत को शब्द व संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म ब्रह्मास्त्र से गीत गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य व संगीत था प्रीतम का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे मोहित चौहान की आवाज में फिल्म दिल्ली 6 से। प्रसून जोशी की लिखी इस गीत को संगीत से संवारा है AR रहमान ने।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म माय नेम इज खान से गीत अदनान सामी, शंकर महादेवन और श्रेय घोषाल की आवाज में गीत करते निरंजन अयंगर व संगीत था शंकर एहसान और लॉय का। इस गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस संदेश के बाद।
1: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1-3 minute का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स OTT ऐप पर रजिस्टर करो जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 rupees, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5 lakh rupees। सबमिशंस ओपन है 1 August से 31st August 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
0: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे पंडित विश्व मोहन भट्ट से गिटार वादन। राग है बागेश्वरी व तबले पर संगतिया है सुखविंदर सिंह नामदारी ने। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, आप सुन रहे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 4:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित हिंदी में समाचार और 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिला स्थित गोल्डन पगोड़ा में आगामी 14 से 20 नवंबर तक आयोजित होने वाले भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के प्रदर्शनी की तैयारियों के सिलसिले में हाल में एक बैठक आयोजित। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पासीघाट स्थित अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आयोजित वंदे मातरम 150 में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन। और भारत वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा है कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा है कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमानित और अनुमति देने से इनकार करने का फैसला लिया गया था। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर 8-9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव रखा है। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC के प्रबंधक निदेशक को पत्र भेजा। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ और अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों और राजनीतिक नेतृत्व एवं महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिला स्थित गोल्डन पगोड़ा में आगामी 14 से 20 नवंबर तक आयोजित होने वाले भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के प्रदर्शनी की तैयारियों के सिलसिले में हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई। इनमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC और नई दिल्ली स्थित

0: राष्ट्रीय संग्रहालय की अग्रिम सुरक्षा समन्वय टीम ASL द्वारा भाग लिया गया। बैठक में कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव ममता रिबा, IBC के निदेशक यश सक्सेना, राष्ट्रीय संग्रहालय के अधिकारियों तथा नामसाई जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान आगामी आयोजन को सुचारू, सुरक्षित और गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें सुरक्षा व्यवस्था, निर्धारित प्रोटोकॉल, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, आगंतुकों का प्रबंधन, रसद एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं तथा आयोजन की समग्र तैयारियां शामिल रही। ASL टीम ने जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान गोल्डन पगोडा में आयोजित होने वाले इस पवित्र कार्यक्रम की तैयारियों का आकलन किया गया और आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आवश्यक समन्वय व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पासीघाट स्थित अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षण और सीखने के लिए आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए तथा विश्वविद्यालय के मौजूदा 106 एकड़ परिसर का विस्तार भी किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आयोजित वंदे मातरम 150 के भव्य समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय को विकास के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है। उन्होंने विश्वविद्यालय के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। वंदे मातरम के महत्व पर बोलते हुए श्री रिजिजू ने कहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश में देशभक्ति की भावना जगाने में राष्ट्रगीत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश से वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाया जाना एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। पासीघाट स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ IQAC के सहयोग से किया। इस व्याख्यान श्रृंखला में विद्यार्थियों, शोधार्थियों और संकाय सदस्यों को समकालीन हिंदी कविता से जुड़ने के लिए एक समृद्ध अकादमिक मंच प्रदान किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से समकालीन हिंदी कविता की उभरती प्रवृत्तियों, हाशिए की आवाजों और आलोचनात्मक दृष्टिकोणों पर भी चर्चा की गई। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरदर्शन संचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा है कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का पांचवा देश बन गया है। उन्होंने कहा है कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपये से घटकर 8 रुपये से भी कम रह गई है। पुदुचेरी में कत्तना चौबड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया NR कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 सीटों से हराया है। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे है। तमिलनाडु की मंदुरातकम में धारापुर सीटों पर सत्तारूढ़ TVK के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा बढ़त बनाए हुए हैं। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावे पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके।
1: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची H, H1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का

0: मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: एक सवाल पूछूं, अगर कल कोई आपके डिस्ट्रिक्ट घूमने आए तो आप उसे सबसे पहले कहाँ ले जाएं?
2: सोचिए, मैं किसी फेमस टूरिस्ट प्लेस की बात नहीं कर रही, मैं उस जगह की बात कर रही हूँ जो सिर्फ आपकी लिए खास है। शायद वो आपका फेवरेट सनसेट पॉइंट, या फिर वो स्वाद वाला एड्रेस या बचपन वाली गली, या फिर कोई ऐसा मेला जिसके बारे में बाहर के लोग कम ही जानते हैं। बस यही तो आपकी कहानी है और इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का समय आ गया। अपने डिस्ट्रिक्ट की कहानी रिकॉर्ड कीजिए और दिखाइए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया जेम छुपा है। तो इंतजार किस बात का? जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए, 1 से 3 मिनट का वीडियो बनाइए और माई वेब पे अपलोड कीजिए और आप भी जीत सकते हैं 5 लाख, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के पास है कई कहानी।
0: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। जरोखा में पहले सुनिए एक जरूरी सूचना। जिला उपायुक्त इंचार्ज तवांग के कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि सेवा संकल्प उत्सव नमो सेवा अनकही कहानियां के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक यानी स्ट्रीट प्ले का प्रदर्शन रविवार 11 अक्टूबर 2026 को दोपहर 1 बजे ओल्ड मार्केट तवांग गिफ्ट हब के आस पास किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना, सकारात्मक सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना और युवाओं को राष्ट्र निर्माण और नशामुक्त समाज की ओर प्रेरित करना है। नुक्कड़ नाटक निम्नलिखित विषयों पर आधारित होगा। पहला है सेवा से संकल्प तक भारत का रूपांतरण और 2047 तक एक विकसित भारत का सपना, और दूसरा है नशामुक्त युवा यानी ड्रग फ्री यूथ। उपरोक्त कार्यक्रम के मद्देनजर कार्यक्रम के सुचारू संचालन और प्रतिभागियों एवं दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 11 अक्टूबर 2026 को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक तवांग ओल्ड मार्केट जेटी फूड मार्ट से रप्तन फोटो स्टूडियो के चौराहे तक यातायात बंद रहेगा। इसके अलावा इस अवधि के दौरान स्ट्रीट प्ले क्षेत्र के आसपास किसी भी वाहन को पार्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आम जनता और सभी संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे प्रशासन का साथ सहयोग करें, यातायात नियमों का पालन करें और असुविधा से बचने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें। सूचना समाप्त हुआ। जरोखा में अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:20 पर मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम शेदुन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे पीएम श्री गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कुंसे की छात्रा त्रिंग सुमू और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोएम ऑफ द डे, जिसमें आप सुन सकेंगे माउंट गेशिला इंग्लिश स्कूल तवांग के छात्र नोरसंग ज्ञातो से कविता का शीर्षक होगा सवा सवा का खेल। शाम 7:11 पर कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत संगीतकार प्रीतम द्वारा संगीत पर चंद हिंदी फिल्मी गीत, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म

छिछोरेस से तुषार जोशी की आवाज में गीत फिल्म, राजनीति से मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाज में गीत फिल्म, ट्यूबलाइट से आतिफ असलम की आवाज में गीत फिल्म, बॉडीगार्ड से ऐश किंग और क्लिंटन सरेजो की आवाज में गीत फिल्म, हियारियां से अरिजीत सिंह की आवाज में गीत फिल्म, किस्मत कनेक्शन से आतिफ असलम और अलका याग्निक की आवाज में गीत फिल्म, शहजादा से शाश्वत सिंह और शलमली खोलगड़े की आवाज में गीत। कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर सुनो प्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:50 पर रीजनल न्यूज 7:55 पर आप सुन सकेंगे लता मंगेशकर की आवाज में एक देशभक्ति गीत कार्यक्रम कुआमी तराने के अंतर्गत। कल रात्रि 8 बजे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब आप सुनिए हमारे केंद्र से कल यानी 10 अक्टूबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2 बजे अंग्रेजी समाचार के साथ, 2:15 पर हिंदी में समाचार जिसे हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कल दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम वंदना, दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत जिसमें आप सुन सकेंगे चंद कोकब्रोक आधुनिक गीत। दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात, 3:33 पर कार्यक्रम नारी संगीत। कल दोपहर 3:50 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी, शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कल शाम 4:45 पर आकाशवाणी ईटानगर सुनो प्रसारित हिंदी में समाचार, 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम नामथार कल शाम 5 बजे 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में श्री लोपसंग नोरबू से 5:35 पर आप सुन सकेंगे लामा लोपसंग सिंह और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। कल शाम 6 बजे आकाशवाणी ईटानगर सुनो प्रसारित कार्यक्रम किसान वाणी, कल शाम 6:44 पर मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम शेदन लेरिम जिसमें आप सुन सकेंगे तावंग मठ के रिमपुचे और लामाओं से बौद्ध भक्ति गीत। कल शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, 7:30 पर कार्यक्रम साज और आवाज, 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार, 7:50 पर रीजनल न्यूज, 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत कार्यक्रम कुआमे तराने के अंतर्गत। कल रात्रि 8 बजे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत, 8:15 पर आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित अरुणाचल न्यूज रील। कल रात्रि 8 बजे 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि ठीक 9 बजे न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारी के साथ आज का कार्यक्रम जरूका यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे मनपा में।

दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय,

0: जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशन पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद न करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसेट वन वेब सहित 3 कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम करेगी। 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है। तमिलनाडु की दारापुरम में टीवीके ने जीत हासिल की, जबकि मधुरांतकम सीट पर टीवीके आगे चल रही है। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने जीत हासिल की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित है। डॉ जयशंकर ने आज अदीस अबाबा में इथियोपिया के विदेश मंत्री घिदियोन तिमोथिओस हेसेबोन के साथ अदीस अबाबा में बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत के साथ खेलते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनो कटारिया। Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar tomorrow. Addressing the media in New Delhi this morning, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said that applications seeking permission to hold protest or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. Ms. Prasad noted that the CJP had previously been granted permission to hold a protest at the venue but failed to comply with the prescribed guidelines and the undertakings given by the party. The Joint Commissioner said the decision to deny permission was taken in view of the prevailing law and order situation, public safety and traffic regulations in the New Delhi area.
2: We have received an application from Saro Das, co-convener of Cockroach.

0: छोटे भी खद्दर का कुर्ता पेटी से ले आएगा, लेकिन जी जी तुम्हें चाहिए एक बहुत बढ़िया साड़ी, वह तुम माँ से ही ले लेना, आज सुबह होगी भारी। धन्यवाद।
1: अभी आपने सुना माउंट गिशलेनिश स्कूल तवंग के छात्र नौरसंग यत्सो से कविता। कविता का शीर्षक था सवा सवा का खेल। इसी के साथ कार्यक्रम पॉइंट ऑफ द डे यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 7:11 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम दर्पण। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे संगीतकार प्रीतम द्वारा संगीत पर चंद हिंदी फिल्में गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, फिल्म राजनीति से मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाज में। गीत को शब्द किया है इरशाद कामिल ने।

अभी आपने सुना फिल्म छिछोरे से एक गीत, तुषार जोशी की आवाज में गीत करते हैं अमिताभ भट्टाचार्य व संगीत था प्रीतम का। आप सुनिए कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत संगीतकार प्रीतम द्वारा संगीत पर चंद हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म ट्यूबलाइट से आतिफ असलम की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा शब्द। इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

0: अभी आपने सुना फिल्म हियारियां से गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, गीतकार इरशाद कामिल व संगीत था प्रीतम का। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हर जिले की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुंच सकती है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर वेव्स ओटीटी इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और माई वेव्स सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स ओटीटी और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुंचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें और सिर्फ पहचान ही नहीं, आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रूपए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत संगीतकार प्रीतम द्वारा संगीत पर चंद हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे निलेश मिश्रा द्वारा शतपथ फिल्म बॉडीगार्ड से एश किंग और क्लिंटन सरेजो की आवाज में। इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

अभी आपने सुना फिल्म शहजादा से गीत शाश्वत सिंह और शर्मली खोलकर की आवाज में गीतकार थे श्लोक लाल व संगीता प्रीतम का। आप सुने कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत संगीतकार प्रीतम द्वारा संगीत पर चंद हिंदी फिल्म गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे आतिफ असलम और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म किस्मत कनेक्शन से। गीत को शब्द किया है सईद कादरी ने।

फिल्म किस्मत कनेक्शन के संगीत के साथ कार्यक्रम दर्पण यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 7:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और 7:50 पर रीजनल न्यूज़।

प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवेंथम नवे पिल्ले को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए आज नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नवे पिल्ले संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख रह चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में न्यायाधीश के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर चुकी है। उन्होंने रंगभेद की व्यवस्था के बीच अपना बचपन बिताया है। इसके बाद उन्होंने रंगभेद विरोधी कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों एवं समानता को आगे बढ़ाने के लिए अपना करियर समर्पित किया। पापमपारे जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसके लिए निगरानी बढ़ाने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के साथ कार्रवाई की जा रही है।

उपायुक्त मामे हागे ने आज यूपी स्थित डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित मासिक एनकोर्ट समिति की बैठक के दौरान इस विषय पर समीक्षा की। जिले से प्राप्त प्रवर्तन संबंधी आंकड़ों के अनुसार हाल के वर्षों में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों और गिरफ्तारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2025 में जिले में 29 गिरफ्तारियां दर्ज की गई थी, जबकि 8 अक्टूबर 2026 तक 8 और मामले दर्ज कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। समीक्षा की गई अवधि के दौरान कुल 97 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उपायुक्त मामे हागे ने कहा है कि निगरानी और प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई तेज किए जाने के कारण दर्ज मामलों और गिरफ्तारियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने जिला चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अस्पतालों में नशा मुक्त एवं उपचार सुविधाओं को अगले 2 महीने के भीतर चालू करना सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभागों को आपसी समन्वय के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की भी सलाह जारी की है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आज आईआईएम शिलोंग के सैटेलाइट सेंटर में भारतीय हिमालयी पिटलैंड्स सुरक्षित पृथ्वी के लिए पृथ्वी के कार्बन भंडारों

0: सुविधाओं को अगले 2 महीने के भीतर चालू करना सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभागों को आपसी समन्वय के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की भी सलाह जारी की है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आज IIM शिलोंग के सैटेलाइट सेंटर में भारतीय हिमालयी पिटलैंड्स सुरक्षित पृथ्वी के लिए पृथ्वी के कार्बन भंडारों का संरक्षण विषय पर एक कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसका आयोजन भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के सहयोग से किया। कार्यशाला का उद्देश्य हिमालयी पिटलैंड्स के पारिस्थितिकी महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, सहयोगात्मक संरक्षण प्रयासों और पर्यावरण के अनुकूल सतत गतिविधियों को बढ़ावा देना है। सियांग जिले के बोलिंग स्थित क्रीफ कैंप में आज नई श्रम संहिताओं और बाल श्रम विषय पर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य श्रमिकों और अन्य संबंधित पक्षों को श्रम कानूनों, श्रमिकों के अधिकारों, बाल श्रम की रोकथाम, कानूनी उपायों तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों के बारे में जागरूक करना था। शिविर के दौरान नई श्रम संहिताओं, बाल श्रम में संबंधित कानूनी प्रावधानों और उनकी रोकथाम, श्रमिकों को उपलब्ध कानूनी अधिकारों एवं उपायों के साथ बीमा और सामाजिक सुरक्षा लाभों की जानकारी भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में इस बात पर भी जोर दिया गया कि श्रमिकों और संबंधित पक्षों के बीच उनके कानूनी अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच तथा शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। अपर सुबनसिरी जिला उपायुक्त तसो गंबो ने जारिंग सर्कल के एवं आसपास के क्षेत्रों का विस्तृत विकास दौरा किया। दौरे का उद्देश्य प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करना तथा क्षेत्र में विकसित किए जा रहे आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थिति की समीक्षा करना था। इस दौरान कई महत्वपूर्ण संस्थानों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और रणनीतिक विकास स्थलों का निरीक्षण किया गया। विशेष रूप से संपर्क सुविधाओं को मजबूत करने, सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार लाने तथा दूरदराज के क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दौरे के दौरान उपायुक्त ने दूरदराज के क्षेत्रों में बच्चों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और अनुकूल शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो स्थित रिचो मिनी आउटडोर स्टेडियम में आज सेवा संकल्प उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय पारंपरिक खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य पारंपरिक खेलों, स्थानीय संस्कृति, युवाओं की भागीदारी तथा अपर सुबनसिरी जिले के लोगों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धी की भावना को बढ़ावा देना था। और स्पीक मिके यानी सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चरल अमंगस्ट यूथ अपने स्वर्ण जयंती समारोह के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में छोटे शहरों, दूरस्थ के गांवों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच बना रही है। इस पहल का उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य से परिचित करना तथा इन कलाओं को उनके और करीब लाना है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani Itanagar, the news read by Morgan Bagra. South African jurist and of Indian origin Nawanitham Navi Pillai has won the Nobel Peace Prize today for her contributions to promoting peace and international law. A former UN human rights chief and a judge at the International Court of Justice, Pillai grew up under apartheid and went on to build a career defending anti-apartheid activists and advancing human rights and equality. Born in Durban in 1941 to Indian parents of Tamil descent, she later became the first black woman to serve as a judge on South Africa's High Court. Pathanparit district has intensified its efforts to combat drug trafficking and substance abuse through enhanced surveillance and coordinated enforcement under the Narcotics Coordination or NCOT mechanism. Deputy Commissioner Mamu Hagit today reviewed the issue during the monthly NCOT committee meeting held at the Deputy Commissioner's Conference Hall in UPR. According to district enforcement data, NDPS cases and arrests have increased in recent years. The district recorded 29 arrests in 2025, while 8 cases and 9 arrests were reported up to October 8, 2026. A total of 97 accused persons were arrested during the period under review. Deputy Commissioner Hage said intensified surveillance and enforcement may have contributed to the increase in reported cases and arrests. She directed the district medical

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित रीजनल न्यूज। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में एक देशभक्ति गीत कार्यक्रम क्वामी तराने के अंतर्गत।

लता मंगेशकर की आवाज में इसी देशभक्ति गीत के साथ कार्यक्रम को आमी तराने यहीं पर समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के 8 बज चुके हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म प्रेम पुजारी से लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना है नीरज के व संगीत SD बर्मन का। इस गीत की हमें फरमाइश की है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से आप है TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। और कालका से आप है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बट्टा बजाज।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म काला पत्थर से। महेंद्र कपूर, पमेला चोपड़ा और एसके महान की आवाज में शब्द रचना है साहिर के व संगीत है राजेश रोशन का। इस गीत की हमें फरमाइश की है पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से। आप है मेहर अरोरा, कीर्ति अरोरा, भूमिका अरोरा और ममता अरोरा।

श्रोताओं आप सुन रहे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे किशोर कुमार और वंदना शास्त्री की आवाज में फिल्म पलकों की छाओ में से। शब्द रचना है गुलजार की व संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की हमें फरमाइश की है नारगोदा छत्तीसगढ़ से आप है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। और निम्नबाद जिंद हरियाणा से आप है जसवीर सिंह अरोरा जतेंद्र कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर और करमजीत कौर।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे आशा भोसले की आवाज में। फिल्म लोफर्स से शब्द रचना है आनंद बख्शी की, वसंग गीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की हमें फरमाइश की है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से आप है बावलेश पनवर, दैनी पनवर और मनीष पनवर।

श्रोताओं आप सुन रहे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे फिल्म दिल है बेताब से उदित नारायण कविता और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। रानी मलिक के लिए इस गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत की हमें फरमाइश की है ततरंगी पातापारा छत्तीसगढ़ से आप है हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा और मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगरी रतलाम मध्य प्रदेश से आप है जगदीश धाकर नेमा, रंजू बाय धाकर, युवराज सिंह धाकर और शिवांगी धाकर।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में यानी 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9।

नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। खेल जगत की हलचल, खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मैदान से जुड़ी हर अहम खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मुकाबला जारी। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु, कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। ISSF निशानेबाजी राइफल और पिस्टल विश्व कप का आयोजन मिस्र के काहिरा में। पदक स्पर्धाएं कल से खेली जाएंगी। संघाई मास्टर्स में ज्वेरेव तीसरे दौर में पहुंचे। साकामोतो ने दूसरे राउंड में रुबलेव को हराया। और सीनियर पुरुष नेशनल हॉकी चैंपियनशिप कल से झांसी में शुरू।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से और सीधे लिए चलते हैं आपको झारखंड के रांची, जहां जेएसएससीए क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा क्रिकेट मुकाबला जारी है। रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16 ओवर 4 गेंद पर 4

0: विकेट आउट हो गए हैं भारत के और भारत ने 187 रन बना लिए। इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है और इस मुकाबले की अगर बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 12 गेंद पर 20 रन बनाए हैं। वहीं संजू सैमसन जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे वर्ल्ड कप में, उन्होंने 41 गेंद पर 82 रन बनाए जिनमें 4 छक्के और 9 चौके शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा था। और लोकल बॉय ईशान किशन की बात की जाए तो उन्होंने 22 गेंद का सामना किया और 43 रन बनाए जिनमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। शिवम दुबे ने, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था फाइनल में एशियन गेम्स में, उन्होंने 10 गेंद में 7 रन बनाए और इस समय कप्तान श्रेयस अय्यर 8 गेंद पर 16 रन बनाकर और तिलक वर्मा 8 गेंद पर 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। और अगर गेंदबाजी की बात की जाए वेस्टइंडीज की तो अकील हुसैन ने 3 ओवर में 46 रन दिए। वहीं रोमारियो सेफर्ड का अंतिम ओवर जारी है, उन्होंने 3.4 गेंद पर 47 रन दिए। उधर रोस्टन चेस ने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवर में महज 6 की इकोनॉमी रेट से 3 विकेट लिए और 24 रन ही दिए हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी एकता थानी। एकता, अभिषेक शर्मा के लिए बेहद अहम माना जा रहा था ये मुकाबला, आज कौन से रिकॉर्ड अपने नाम करते करते रह गए अभिषेक?
1: प्रशांत, भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास आज T20 क्रिकेट में 2000 क्लब में शामिल होने का सुनहरा मौका था
0: जी,
1: लेकिन वह क्लब की दहलीज से वापस लौट आए। अभिषेक ने अब तक 62 पारियों में 195.28 की स्ट्राइक रेट से 1947 रन बना लिए थे और रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और KL राहुल की कतार में शामिल होने के लिए उन्हें 53 और रन की जरूरत थी। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अभिषेक शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ रांची में खेले जा रहे श्रृंखला के दूसरे मैच में 20 रन बनाकर आउट हो गए।
0: जी, दिग्गज खिलाड़ी हैं अभिषेक शर्मा, जिस तरह का प्रदर्शन रहा है उनका, 12 गेंद पर आज 20 रन ही बना सके, लेकिन टॉप 5 में, टॉप 2 में हमेशा ही रैंकिंग में अभिषेक शर्मा रहते हैं। हालांकि आज वो रिकॉर्ड को ध्वस्त करने में रह गए, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले मुकाबलों में वही कई कीर्तिमान अपने नाम करेंगे। और अगर श्रृंखला की बात की जाए तो भारत ने पहला मुकाबला डोमिनेट करके जीता था, आगे की क्या तस्वीर है एकता और दोनों टीमों का रिकॉर्ड इस प्रारूप में क्या है?
1: देखिए प्रशांत, भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 श्रृंखला का रांची में खेला जा रहा जो मुकाबला है ना, ये श्रृंखला के निर्धारण में अहम भूमिका निभाएगा
0: जी।
1: भारत पहले मैच में जीत दर्ज करके श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले चुका है और अब वेस्टइंडीज के सामने श्रृंखला बचाने की चुनौती है, लेकिन मुश्किल यह है कि इसके लिए उसे भारत को लगातार 2 मैचों में हराना होगा
0: जी।
1: और हम अपने सुनने वालों को बता दें कि पिछले 4 वर्ष से ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी टीम ने भारत को भारत में लगातार 2 T20 मैचों में मात दी हो। जून 2022 में आखिरी बार ऐसा हुआ था जब भारत को दक्षिण अफ्रीका ने लगातार 2 मैचों में मात दी थी। उसके बाद के 4 वर्षों में अपनी सरजमी पर भारत का रिकॉर्ड 42 जीत और 9 हार का है। यह बात भी ध्यान देने वाली है कि भारत ने 7 साल से भी अधिक समय से कोई घरेलू T20 श्रृंखला नहीं गंवाई है
0: जी।
1: श्रेयस अय्यर की कप्तानी की शुरुआत में आपको याद होगा कि भारत आयरलैंड और इंग्लैंड के हाथों T20 श्रृंखलाओं में बुरी तरह हार गया था
0: जी।
1: और मुझे तो लगता है कि देश के क्रिकेट प्रेमी इसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद भारतीय टीम लगातार 10 मैच जीत चुकी है। दोनों टीमों के बीच खेले गए मैचों की बात करें तो अब तक भारत और वेस्टइंडीज की टीमें 32 बार टकराई हैं
0: जी।
1: इनमें 21 मैच भारत ने जीते हैं जबकि 10 मैचों में वेस्टइंडीज विजयी रहा है। एक मैच बेनतीजा खत्म हुआ। इस श्रृंखला के अगले मैचों पर नजर डालें तो 11 अक्टूबर को इंदौर में तीसरा मैच होगा, चौथा मैच हैदराबाद में 14 अक्टूबर को खेला जाएगा और आखिरी मैच 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा
0: जी। ओवरऑल 21 का रिकॉर्ड है भारत का और ऐसा लग रहा है कि आज 22 हो जाएगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी सशक्त तरीके से 12 गेंद पर 30 रन बनाकर खेल रहे हैं और ईशान किशन ने भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे वो एशियन गेम्स हो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, दिलीप ट्रॉफी हो, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आज अपने घरेलू जगह पर भी उन्होंने आज बेहतरीन प्रदर्शन किया, ताबड़तोड़ 43 रन की पारी खेली। लोकल बॉय ईशान किशन ने मुकाबले से पहले

0: क्या कुछ कहा आइए सुनते हैं.
1: Crowd is there. Crowd is going to be like, you know, when you come here, I've played so much cricket for Jharkhand now. And when you come here, in fact, you get that support or you don't get that support. But you know, there's a lot of members who are going to watch you and who will have expectations just out of love. Not that ki something else will be there, but out of love, they'll just want you to perform. So I know there's a bit of added pressure, but that is the fun part. When you have that pressure, when you know so many family members are sitting there watching your game, you have that pressure. And when you perform there, you get stronger. You get better in life.
0: उधर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच डर्बन में खेला जा रहा है. पहले दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं. मैट रेनशॉ 46 और कप्तान पैट कमिंस 33 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है. दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को यानसन, मुल्डर और नोकिया ने दो दो विकेट लिए. 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 18 अक्टूबर को और तीसरा 27 अक्टूबर को केपटाउन में खेला जाएगा. और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर. आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज अलग अलग वर्गों के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे. महिला सिंगल्स में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रेचचेनाक इंतनान से होगा. वहीं पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय का मुकाबला डेनमार्क के क्रिश्चियन फॉस्ट केजियर और रेशमस केजियर से होगा. और श्रोताओं को बता दें कि भारतीय जोड़ी ने पिछले मुकाबले में इंग्लैंड के ओलिवर बटलर और सैमुअल जोन्स को हराया था. कैसा रहा है अब तक अनुभवी पीवी सिंधु का सफर और क्या कुछ उनसे उम्मीदें होंगी?
2: प्रशांत, आप तो जानते ही हैं कि भारत में पीवी सिंधु को महिला बैडमिंटन का पर्याय माना जाता है.
0: जी,
2: वह लगातार दो ओलंपिक खेलों में देश के लिए व्यक्तिगत पदक जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं. वह वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड टूर प्रतियोगिता में भी पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ा चुकी हैं. वह देश की पहली और एकमात्र विश्व चैंपियन महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं. वह बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर अप्रैल 2017 में विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल करने में सफल रही थी. उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न जैसे पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है. आर्कटिक ओपन सुपर 500 की बात करें तो सिंधु ने जापान की रिको गुंजी को मात्र 49 मिनट में 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है.
0: जी, युवा भारतीय जोड़ी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. पिछला मुकाबला जीतकर अपनी लय बरकरार रखी है. इस प्रतियोगिता से क्या उम्मीदें होंगी?
2: देखिए प्रशांत, जब भी कोई खिलाड़ी जीतता है तो उनसे और जीत की उम्मीद की जाती है. भारत के कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय ने पुरुष डबल्स मुकाबले के पहले दौर में 5वीं वरीयता प्राप्त चीन के जिन टिंग और रेन शियांग यू को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया है. श्रोताओं को याद दिला दें कि कृष्ण और पृथ्वी की जोड़ी ने मई में एक के बाद एक सेंट डेनिश रीयूनियन और छठी मैक्सिकन अंतर्राष्ट्रीय चैनल प्रतियोगिता जीती थी.
0: बहुत बहुत जानकारी के लिए धन्यवाद एकता. और अब बात निशानेबाजी पर. ISSF निशानेबाजी राइफल और पिस्टल विश्व कप का आयोजन मिस्र के काहिरा में किया जा रहा है. पदक स्पर्धाएं कल से खेली जाएंगी. सुनते हैं ये रिपोर्ट.
3: निशानेबाजी की दुनिया में एक बार फिर रोमांच और प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार है. ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन 8 से 16 अक्टूबर तक काहिरा में किया जा रहा है. प्रतियोगिता में 51 देशों के लगभग 385 निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं. भारतीय टीम में कुल 35 निशानेबाज शामिल हैं. इनमें पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह के साथ एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पलक गुलिया जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं. भारत के युवा निशानेबाज जोनाथन गेविन एंथनी पर भी निगाहें रहेंगी, जो जूनियर स्तर पर शानदार प्रदर्शन के बाद सीनियर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे. इस प्रतियोगिता में राइफल और पिस्टल की व्यक्तिगत तथा मिक्स्ड टीम स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी. भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये प्रतियोगिता अपनी लय और प्रदर्शन को परखने के साथ साथ साल के अंत में होने वाले ISSF विश्व कप फाइनल के लिए जगह बनाने का भी अहम अवसर है. 10 अक्टूबर को 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर राइफल की मिश्रित टीम स्पर्धाओं के साथ पदक मुकाबलों की शुरुआत होगी. मिक्स्ड टीम एयर पिस्टल में पलक गुलिया, मुस्कान उदयवीर सिद्धू और अजेंद्र सिंह चौहान भारतीय चुनौती पेश करेंगे. वहीं एयर राइफल मिक्स्ड टीम में आर्या बोरसे, ख्याति चौधरी, श्रीकांत धनुष और पार्थ मखीजा हिस्सा लेंगे. काहिरा विश्व कप में भारतीय दल के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने और पदक तालिका में मजबूत उपस्थिति दर्ज

0: कराने की चुनौती होगी। अब देखना होगा कि भारतीय निशानेबाज अपने सटीक निशाने और शानदार प्रदर्शन से देश के लिए कितने पदक जीत पाते हैं। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स गैन।
1: और अब चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कल से झांसी में किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक खेली जाएगी। प्रतियोगिता के 3 डिवीजनों में 29 टीमें मुकाबला करेंगी। डिवीजन ए का फाइनल मुकाबला 21 अक्टूबर को होगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: देश भर की हॉकी टीमों के बीच कल से वर्चस्व की लड़ाई होगी। इस संस्करण में डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी होंगे, जिसमें टीमों को पिछले संस्करण की रैंकिंग के अनुसार समूह में बांटा जाएगा। ये चैंपियनशिप देश भर की टीमों को अपना टैलेंट दिखाने और नेशनल लेवल पर सम्मान के लिए मुकाबला करने का एक कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म देगी। डिवीजन ए में 12 टीमें होंगी, जिन्हें 3-3 टीमों के 4 पूल में बांटा गया है। पूल ए में हॉकी पंजाब, हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु और हॉकी बंगाल शामिल है, जबकि पूल बी में हॉकी मध्य प्रदेश, हॉकी महाराष्ट्र और हॉकी पुदुचेरी शामिल हैं। पूल सी में उत्तर प्रदेश हॉकी, हॉकी कर्नाटका और हॉकी चंडीगढ़ शामिल हैं, जबकि पूल डी में मणिपुर हॉकी, हॉकी हरियाणा और दिल्ली हॉकी शामिल है। पूल चरण के बाद 18 अक्टूबर को क्वार्टर फाइनल होंगे, जिसमें हर पूल से टॉप 2 टीमें नॉकआउट स्टेज में जाएंगी। सेमीफाइनल 19 अक्टूबर को होंगे, उसके बाद तीसरे स्थान के लिए मैच और फाइनल 21 अक्टूबर को होगा। 3 डिवीजनों में टीमों के बीच मुकाबला होने के साथ 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप झांसी में घरेलू हॉकी के रोमांचक 2 सप्ताह का वादा करती है, क्योंकि इसमें हिस्सा लेने वाली टीमें अपनी पहचान बनाने और अपने अपने टाइटल के लिए चुनौती पेश करने का लक्ष्य रखेंगी। पिछले संस्करण में हॉकी पंजाब ने डिवीजन ए के फाइनल में हॉकी मध्य प्रदेश को 4-1 से हरा कर प्रतिष्ठित 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता था। उत्तर प्रदेश हॉकी ने तीसरे स्थान के मैच में मणिपुर हॉकी को 5-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। शंघाई मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता में जर्मनी के स्टार खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने आज दूसरे दौर में चीन के स्थानीय खिलाड़ी वो यिविंग को 6-4, 7-6 से हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं जापानी क्वालिफायर रेस साकामोतो ने दूसरे राउंड में पूर्व फाइनलिस्ट एंड्री रुबलेव को 6-4, 6-4 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। और श्रोताओं, आपको एक बार फिर रांची लिए चलते हैं, जहां पर भारत और वेस्टइंडीज का मुकाबला जारी है। भारत ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 224 रन बना ली है। श्रेयस अय्यर कप्तान 16 गेंद पर 38 रन और तिलक वर्मा 14 गेंद पर 25 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने भी तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में 1 सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा विजय रही। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नविपिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलगा वेत्री कड़गम ने 2-2 तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की।

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलग वेत्री गड़गम टीवीके ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।

0: पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांकरेज जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सराय काली खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। शंकर रोड वंदे मातरम टी पॉइंट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले गोल चक्करों, झंडेवाला, पंचकुइया मार्ग, मंडी हाउस, अशोक रोड से जंतर मंतर रोड, विंडसर पैलेस और टॉलस्टॉय मार्ग से जनपथ क्रॉसिंग तक के लिए मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कांकरेज जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन पर्म कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
2: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्म H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। पर्म आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
1: श्री जायसवाल ने अमरीका के उपराष्ट्रपति J.D. Vance की गैर अमरीकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
2: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं।

0: वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
2: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं, इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल हैं। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, साथ ही सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
3: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
4: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
5: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जोड़ना भी है।
6: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन।
3: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारतीय टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही।
7: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: चीन में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के लिए 20 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले

0: कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानव अधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय नहीं होती, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु में उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में तत्तान चावड़ी सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. BJP wins assembly polls for Rajinagar and Nandigram constituencies in West Bengal. In Tamil Nadu, ruling TVK wins assembly by polls for Madurantakam and Dharapuram seats. All India NR Congress retains Thattan Chowri assembly constituency in Puducherry. BJP also bags Assam's Nogaon Lok Sabha seat. Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi to remain closed till tomorrow due to security reasons. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow stands cancelled at source stations. India stresses the steps announced by U.S. regarding permanent labour certification program do not advance shared ambitions of both countries. South African jurist of Indian origin, Navneetam Navi Pillai, wins Nobel Peace Prize for her contributions to promoting peace and international law. And in cricket, second T20 international between India and West Indies underway in Ranchi. The BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal Nandigram and East Mednipur district and Rajinagar and Murshidabad district, where by-elections were held. In Nandigram, BJP candidate Hasi Rani Rath defeated her nearest rival, Congress candidate Milan Pradhan, by a margin of over 1,22,000 votes. In Rajinagar, BJP candidate Shakarav Sarkar wrested the seat from the Aam Janata Union Party, or AJUP, securing 1,29,914 votes. He defeated his nearest rival, Ghulam Nabi Azad, son of AJUP chief Humayun Kabir, by a margin of over 75,000 votes. With victories in both these constituencies, the BJP's tally in the West Bengal Assembly has risen to 209 seats. In Puducherry, All India NR Congress candidate Ashok Anand has secured a comfortable victory with a margin of 8,482 votes for Thattanam Chowri Assembly constituency.